0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. Ab har bite ke saath milegi extra savings. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
3: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
4: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

बिल्कुल सही हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ। जिंदगी भी बहुत बढ़िया चल रही है। ऊपर नीच तो होती रहती है, मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो यू शैल वी शैल ऑल मूव ऑन विथ वट एवर लाइफ ऑफर्स अस। जैसे मार्विन जी ने बोला, आज तो आज के दिन बिग मामा थॉर्नटन ने वो गाना रिकॉर्ड किया था। अगर आप सुन रहे थे पहले, इसके पहले शो, तो बिग मामा थॉर्नटन वॉज लाइक वन ऑफ द रियली लेजेंडरी ओल्ड ब्लू सिंगर्स। एंड फन फैक्ट, शी वॉज बॉर्न एग्जैक्टली 100 साल पहले, मुझे तुमसे प्यार था। 1926 को उनकी पैदाइश हुई थी, एंड देन शी बिकेम रियली फेमस, एंड देन शी रिकॉर्डेड दैट सॉन्ग यू एन नथिंग बट हाउंड डॉग क्राइंग ऑल द टाइम। एग्जैक्टली, और उसको बाद में एल्विस ने भी चोरी करके रिकॉर्ड किया था विदाउट गिविंग हर एनी क्रेडिट्स, लेकिन सबसे पहले उन्होंने रिकॉर्ड किया था। पता है फन फैक्ट क्या है? फन फैक्ट ये है कि जैसे आपको पता है, आई एम ऑल्सो, माई बैकग्राउंड इज ऑल्सो ब्लूज, एंड आई हैव बिन सिंगिंग दैट फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम सिंस 2009। और मैं इंडिया में भी परफॉर्म करती थी। दिस सॉन्ग वॉज एक्चुअली वन ऑफ द सॉन्ग्स इन माई रेगुलर प्ले लिस्ट। और मुझे प्यार से दिल्ली में लोग बड़े टाइम से मुझे लिटिल मामा बोलना शुरू कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि मैं बिग मामा थॉर्नटन के गाने गाती थी। तो मुझे कह रहे थे, तुम तो बिग तो नहीं हो, क्योंकि 5 फुट 3 की तो तुम लिटिल ही हो और तुम्हारा साइज भी उतना बिग नहीं है, तो इसीलिए वी विल कॉल यू लिटिल मामा, लिटिल ब्लूज मामा। तो मैंने कहा चलो भाई, आई विल टेक इट, दैट इज़ वेरी क्यूट, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली कॉम्प्लीमेंट। हाउ एवर, मेरे बारे में बात ना करके थोड़ी आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? थर्सडे है, टुडे इज द लास्ट डे दैट आई एम गोना बी हियर विथ यू दिस वीक। आई विल बी बैक विथ यू गाइज ऑन मंडे, तो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट टुडे। तो आज लेट्स स्टार्ट विद दिस सॉन्ग फ्रॉम द अपकमिंग मूवी। क्या नाम है इसका? अल्फा, अल्फा ही है ना नाम इसका? हाँ, वो जो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, शार्वरी एंड आलिया भट्ट की। तो आप ये गाना सुनिए, विल बी राइट बैक आफ्टर द सॉन्ग।

एक्चुअली गलत गाना बजा दिया, वो तो अल्फा गाना नहीं है, तो गाना पहले 1 साल पहले रिलीज हुआ है. आप ये गाना सुनिए, दिस इज फ्रॉम द न्यू मूवी अल्फा दैट्स कमिंग अप रियली सून, इट्स कॉल्ड मैसेकर.

भाई इतनी जोर से नाचे कि घुंघरू टूट ही गए। माय गॉश भाई, घुंघरू का तो नहीं पता, मेरे घुटने जरूर टूट गए। पता है क्या, एक उम्र के बाद ना आप कहाँ पे क्या कूदते हो उसका आइडिया भी नहीं होता। आपको लगता है कि ओह आई एम सो यंग एंड सो फिट, एंड देन द नेक्स्ट मोमेंट यू आर रनिंग ऑन द ट्रेडमिल लाइक मी, एंड देन सडनली यू पॉप समथिंग इन ऑन योर लेफ्ट नी, एंड देन यू आर वंडरिंग अरे ये क्या था। कोई नहीं, थोड़ी सी पेन है, हल्का सा थोड़ा सा कुछ पॉप हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा एक आइबुप्रोफेन खाएंगे और पार्टी में जाके एक टकीला शॉट मारेंगे, पेन वेन सब गायब हो जाएगा, अगले दिन उठ के फिर सब ठीक। देन यू रियलाइज ब्रो यू आर नॉट 25 एनी मोर एंड इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। सो नाउ देन यू लैंड अप, यू नो, घुंघरू तो नहीं पता, घुटने जरूर टूट गए पिछले 2 हफ्ते से। दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपन टू मी दैट आई एम डीलिंग विद, एंड आई फील लाइक लाइक लिटरली नथिंग हैपन्ड। ना मैं गिरी ट्रेडमिल से, ना मैंने कुछ किया, आई वॉज डूइंग स्प्रिंट्स। सो आई हैव दिस थिंग वेर आई लाइक टू डू लाइक 15 मिनट की फास्ट वॉक ऑन एन इंक्लाइन, एंड देन मैं इंक्लाइन उतार के मैं 1 मिनट की स्प्रिंट करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आधे घंटे पूरे, आधे घंटे 35 मिनट्स आई स्पेंड ऑन द ट्रेडमिल। दैट्स माई मोस्टली 5 डेज अ वीक कार्डियो, एंड देन 2 वीक्स अगो एग्जैक्टली वॉट आई सेड, एग्जैक्टली दैट्स वॉट हैपन्ड। एंड देन लास्ट वीक आई वेंट टू अ फ्रेंड्स पार्टी, आई हैड सम दवाई एंड ऊपर से मैं डांस करी हूँ, बिल्कुल नी वॉबल वाली डांस, ऋतिक रोशन की तरह एकदम चकाचक। और फिर उसके बाद से तो मेरे से चला ही नहीं जा रहा, अभी फिर से पेन शुरू हो गया है। 3 दिन से बैठ के मैं आइस कर रही हूँ, ये सब सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई हुआ क्या, आई स्टिल डोंट नो वॉट हैपन्ड। हाउएवर कोई बात नहीं, वी ऑल ड्रीम विश एंड वी ड्रीम दैट वी कुड बी 25 अगेन, लेकिन गाइज ड्रीम तो अपनी जगह पे है, वी कॉन्ट अनफॉर्चुनेटली गो बैक इन टाइम। लेकिन यू नो वॉट यू कैन डू, यू कैन ड्रीम अबाउट योर हाउस विद ड्रीम होम मॉर्गेज सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली, दे हैव हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इन टू अ रियालिटी विद पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशन एंड अ स्मूथ एंड स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 states एंड दे आर कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शन टेलर टू योर नीड्स। सो वेदर यू आर बाइंग अ फर्स्ट होम, अपग्रेडिंग और रिफाइनेंसिंग, प्लीज गिव दम अ कॉल एंड स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टूडे। कॉल 972-245-5626 और विजिट ड्रीम होम मॉर्गेज .com फॉर मोर डिटेल्स। एग्जैक्टली गाइज, तो भूलना मत, ड्रीम होम मॉर्गेज, घर के सपने हम देख सकते हैं, रिवर्स एजिंग की सपने तो अनफॉर्चुनेटली नॉट पॉसिबल अनलेस आप, वो कौन सी मूवी थी, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में क्या, फाउंटेन ऑफ यूथ, अगर आपको कभी मिल जाता है, अगर आप उसके सपने देख रहे हैं तो मुझे भी बता देना, आई वुड लाइक टू हैव माई नीज बैक अगेन।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route, rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
3: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
2: क्यों?
3: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hurst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
5: एक और लड्डू ले लो।
6: थोड़ी और बिरयानी।
5: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
7: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
4: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन प्राइमरी।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: Helpline, how may I help you?
11: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
10: Fear not, we have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
12: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897, or visit astrologerishwar.com.
13: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

तो डालस की जनता की हालचाल, दिस इज इपी द हिपी ऑन फनीशा रेडियो, बैक विथ माय शो एन इवनिंग इन डालस. मुझे तो, मैं तो भूल ही गई, मैं आ जाई यहाँ पे आपके पास बात करने और फिर आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू टेल यू हु आई एम. But my regular listeners, you don't need to know who I am because you already know who I am. That's right. Guys, if you've been following for the last 1 week, you know, Monday ko humne dil chahta hai ki celebration ki thi, right? I mean, 25 years ago, that movie came out so iconic with the iconic characters and everything. Lekin wo bol ke na fir mujhe, I really wanted to watch it all over again. I mean, dil chahta hai. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लुटेरा, दीज आर सम ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट बॉलीवुड मूवीज़. मतलब पुरानी वाली भी है बहुत सारी, लेकिन रीसेंट में जो रिलीज़ हुई है ना, तो एंड क्वीन इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई हमेशा की लाइक फेवरेट टाइप मूवी. तो जब कुछ नहीं होता है तो मैं ये वाली मूवीज़ ज़रूर देखती हूँ, जस्ट टू लाइक अ फील गुड मूवी. तो दिल जाता है, फिर मैंने बात करी तो मैंने कहा नहीं यार, आई वांट टू वॉच इट अगेन. सो आई टर्नड इट ऑन एंड आई वॉज लाइक स्ट्रीमिंग इट. और मैं देखते देखते फिर ना उसमें वो कैरेक्टर याद है आपको, सुबोध, हु वॉज पूजाज बॉयफ्रेंड. अगर नहीं याद है तो आई विल टेल यू मोर अबाउट सुबोध, क्योंकि हम लोग कल कैरेक्टर एनालाइज कर रहे थे उसका, क्या बोलते हैं, कॉकटेल के जो मेन कैरेक्टर्स थे, जो प्लेड बाय सैफ अली खान, डायना पेंटी एंड दीपिका पाडुकोन, राइट? वी वर टॉकिंग अबाउट वरोनिका, गौतम एंड मीरा. तो वो करते करते इतना मतलब यार, लोगों ने This guy, Subodh, he's such a memorable character. सब उसको इतना बदनाम करते थे, अभी भी उसको लोग बहुत बदनाम कर रहे हैं, मूवी में सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन टू थिंक अबाउट इट, ही इज क्वाइट यू नो लाइक डिसिप्लिंड इन द सेंस एट एंड आफ्टर रीचिंग अ सर्टन एज or like after you know self realization, especially living in America and things like that, I was watching and I was like yaar, he is like the goal, he is the person that we are somehow all striving to become, you know, better versions of ourselves. So we will talk a little bit more about that. Lekin aage badhte hue guys, maine jo main bata rahi thi aapko, is hafte pata hai kya hai na, weekend pe hai इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सस का आनंद बाजार, दैट इज हैपनिंग ऑन सैटरडे ऑगस्ट 15th फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एट द कॉमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. एंड द बेस्ट पार्ट, इट इज कम्प्लीटली इंडोर्स एंड फ्री फॉर एवरीवन. तो एग्जैक्टली आपको डैलस की तपती हुई धूप में झेलना नहीं पड़ेगा, यू कैन जस्ट इन्जॉय द नाइस ठंडा ठंडा एसी और ठंडी ठंडी मैंगो लस्सी पियेंगे आप लोग, इन्जॉय ऑथेंटिक इंडियन फूड, ग्रैंड परेड, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, लाइव म्यूजिक एंड शॉपिंग एंड मोर. तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स सबको लेके जाइए, गोरों को भी लेके जाइए, जो आपके नॉन इंडियन फ्रेंड्स हैं उनको भी लेके जाइए, एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ टेक्सस बिगेस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, IANT आनंद बाजार 2026. ओके, सो मेक श्योर दैट यू गो देयर. तो विदाउट फर्दर अडू, लेट अस गो इनटू अ सॉन्ग एंड देन वी विल कम बैक एंड ब्रेक डाउन सुबोध.

तो गाइज हम बात कर रहे थे सुबोध के कैरेक्टर की, ठीक है भाई? आपको याद है ना सुबोध, उसका नाम आई थिंक सैफ अली खान के कैरेक्टर जिसका नाम था समीर, ही हैड नेम्ड हिम क्या टाइम टेबल, क्योंकि क्यों बिकॉज ए अच्छा तो लेट्स लेट्स लेट्स गो ओवर द स्टोरी लिटिल बिट वन मोर टाइम, ठीक है? तो क्या होता है कि समीर इज लाइक दिस ऑब्वियसली इमोशनली अनस्टेबल गाय, क्योंकि वो हर 2 दिन में किसी नई लड़की के प्यार में पड़ जाता है। तो उसके पेरेंट्स उसकी शादी कराने की कोशिश करते हैं, अरेंज मैरिज। तो उसके घर पे एक लड़की आती है हुज नेम इज़ पूजा, एंड यू नो दे आर सिटिंग इन हिज रूम एंड दे आर टॉकिंग एंड ट्राइंग टू गेट टू नो ईच अदर। फिर पूजा कहती है, देख भाई मुझे तो ऐसे शादी अरेंज मैरिज वाली करनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है शादी करने के लिए प्यार होना ज़रूरी है। तो समीर कहता है, हाँ पर मुझे तो तुम अच्छी लग गई, मुझे तो लगता है प्यार हो गया। वो अपने दिमाग में ये सोचता है, ये बातें बोलता नहीं है ऑफकोर्स। तो वो पूछता है कि तुम्हारे कोई है क्या, आई मीन आर यू डेटिंग एनी वन? तो कहती है, हाँ आई एम डेटिंग दिस वन गाय, उसका नाम है सुबोध, लेकिन हम इतना प्यार नहीं करते एक दूसरे के साथ कि हम लोग शादी करेंगे। वी आर जस्ट काइंड ऑफ डेटिंग एंड फीलिंग ईच अदर आउट एंड वी विल सी हाउ एवर इट एंड्स। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। तो द नेक्स्ट थिंग यू नो इज कि पूजा एंड द सुबोध पर्सन दे आर ऑन अ डेट, ठीक है? एंड इट सीम्स लाइक एन इम्पॉर्टेंट डेट, क्योंकि यू नो देर एट अ फैंसी रेस्टोरेंट एंड हैविंग डिनर। तो वहाँ से आ जाता है समीर, टपक जाता है कहीं से एंड ही इज थर्ड व्हीलिंग देयर डेट। कहता है, ओ माई गॉड गाइज, आप यहाँ पे व्हाट आर यू गाइज डूइंग ओवर हियर एंड एवरीथिंग। तो यू नो जस्ट आउट ऑफ फॉर्मैलिटी कहता है, वाई डोंट यू ज्वाइन अस, इवन दो यू शुड नेवर थर्ड व्हील अ कपल वेन दे आर ऑन अ स्पेशल डेट, स्पेशली एट अ फैंसी रेस्टोरेंट। यू शुड नॉट डू दैट, इज जस्ट प्लेन रूड, यू नो, लेट द पीपल हैव देयर ओन टाइम। लेकिन ऑफकोर्स समीर इज हिटिंग ऑन दिस गर्ल, तो वो कहता है ठीक है आई विल ज्वाइन। तो थोड़ी देर बाद सुबोध उठता है, उठ के वो जाता है 3 ग्लास शैम्पेन लेकर आता है, ठीक है? और शैम्पेन ला के कहता है, लेट्स सेलिब्रेट गाइज। तो वो कहता है, क्यों, व्हाट इज द ओकेजन? पूजा खुद भी शॉक्ड है, पूजा को भी नहीं पता, क्योंकि पूजा भी टाइम पास ही कर रही है, उसको सीरियसली डेट करना नहीं था सुबोध को, वो उसको ऐसे ही घुमाए जा रही है। तो सुबोध कहता है, आज ही के दिन हम 5 महीने पहले यहीं पे ऐसे ही मिले थे। तो कहती है, ओ शी इज शॉक्ड कि ब्रो ये तो एक्चुअली उससे प्यार करता है, मतलब यू नो ही रिमेम्बर्स स्मॉल लिटिल डिटेल्स लाइक 5 महीने पहले हमने पहली बार डेट किया था, तो 5 month एनिवर्सरी। भाई लोगों यहाँ पे तो साल भर की 10 साल की एनिवर्सरी याद रहती, इस बंदे को 5 महीने की एनिवर्सरी याद रहती है। पहली चीज, दैट इज नॉट अ रेड फ्लैग गाइज, दैट इज अ ग्रीन फ्लैग। आई कैन नॉट टेल यू हाउ मेनी टाइम्स ऑल ऑफ अस वुमेन थिंक कि यार काश हमें ऐसा कोई बंदा मिल जाता जिसे एनिवर्सरी या बर्थडेज याद रहते, क्योंकि लोगों को नहीं रहते याद। ऑनेस्टली फ्रॉम फॉरगेट फीमेल परस्पेक्टिव, मुझे खुद भी नहीं याद रहता है। अगर फेसबुक नहीं होता ना, मुझे किसी का भी जन्मदिन याद नहीं रहता। तो उस हिसाब से इफ ही रिमेम्बर्स, आई थिंक दैट इज ए मेजर मेजर ग्रीन फ्लैग। ओके, उसका फिर भी मजाक उड़ाया लोगों ने, क्योंकि उसको 5 महीने वाली एनिवर्सरी याद थी। आई मीन ही लाइक्स हर मैन वो। सो तो आगे बढ़ते हुए और भी कुछ ग्रीन फ्लैग्स हैं, वो हम मैं बताऊंगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये कॉन्वर्सेशन। तो आप ये गाना सुनिए, वेलकम बैक एंड टॉक अबाउट मोर अबाउट दीज थिंग्स।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ
3: तो कैरेट लेन चलो दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस
2: सीरियसली कैसा कलेक्शन है
3: मिनिमल डायमंड एलिगेंट एवरीडे स्टाइल्स यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग
4: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क
5: जीनी हुकम मेरे आका
6: हम आज पार्टी के मूड में हैं एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो
5: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं
6: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं
5: नो प्रॉब्लम आका लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
6: और एंटरटेनमेंट
5: मूवी नाइट बेली डांसिंग नाइट्स प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है
6: वाह जीनी ये जगह है या कोई जादू
5: जादू नहीं मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे मिरेकल्स हैपन इन मिराज
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
9: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
11: ये तारा वो तारा हर तारा
12: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
13: उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा ये बॉक्सेस उठा ले रे
14: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं
13: अच्छा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो
14: डॉक्यूमेंट्स बॉक्सेस पूरा घर रिलोकेशन इवन कार ट्रांसपोर्ट
13: इंडिया तक
14: सिर्फ इंडिया नहीं विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज
12: SFL Worldwide घर हो गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव सब सेफली पहुँचता है विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: A

0: हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
1: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज. दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी. कॉल तो करो 888-888-9914.
0: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
2: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.

भाई क्यों तो पता नहीं, लेकिन आपका और मेरा रिश्ता जरूर है पुराना बहुत। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स प्ले आवर गिव अवे गेम। तो भाई कॉल आ रही है मेरे पास अभी, तो मैं अभी वो कॉल नहीं ले सकती। थैंक यू सो मच आप जो भी कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम अभी गिव अवे खेलने वाले हैं। दिस इज इपी द हिपी। अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो आई विल टेक योर कॉल इन जस्ट अबाउट 10 मिनट्स आफ्टर वी प्ले द गिव अवे गेम। तो पहले मैं ये तो बता दूं कि गिव अवे है क्या। द गिव अवे इज फ्रॉम फन पिज्जा किचन टुडे, बिकॉज यू नो वॉट, दे हैव लॉन्च्ड ए ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइन अप, एंड दीज आर नॉट जस्ट पिज्जाज, दे आर फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा। तो चाहे आप फायरी पोयो लोगो ट्राई कर रहे हैं, या फिर द सी फूड पैक सीनियर कैमरॉन, या मुचो माचो पोर्क, एवरी बाइट इज बोल्ड एक्साइटिंग एंड मेड टू इम्प्रेस। हेड ओवर टू फन पिज्जा किचन एंड टेस्ट द न्यू ऑब्सेशन फॉर योर सेल्फ। न्यू फ्लेवर्स, न्यू ऑब्सेशन। फॉर मोर डिटेल्स विजिट funpizzakitchen.com। और आप क्या जीत सकते हैं? यू कैन विन ए $10 गिफ्ट कार्ड बाय आंसरिंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच कैन बी रिडीम्ड एट द फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को। गाइज मेरे को ये कॉल आ रही है बार बार। मैं पहले प्रति आप अगर मुझे कॉल कर रहे हैं तो प्लीज़

0: आप होल्ड करिए बिकॉज वी आर डूइंग अ गिव अवे. तो मे बी दे आर ट्राइंग टू कॉल फॉर द गिव अवे. तो गिव अवे आज का क्या है? इट इज कंप्लीट द डायलॉग. यस आई नो, जैसे मैंने कल बोला था वी विल डू दिस ऑल्टरनेट डेज. पहले एक दिन हम खेलेंगे साउंड्स लाइक गेम, दूसरे दिन हम खेलेंगे गिव अवे गेम. ठीक है, ओ सॉरी, पहले हम खेलेंगे साउंड्स लाइक, देन दूसरे दिन हम खेलेंगे कंप्लीट द डायलॉग. साउंड्स लाइक, कंप्लीट द डायलॉग. तो गाइज आज का हमारा डे है कंप्लीट द आइकॉनिक डायलॉग. तो विदाउट फर्दर डू लेट्स प्ले. दिस डायलॉग इज फ्रॉम द एब्सोल्यूट आइकॉनिक मूवी दामिनी. आपको पता है कि मैं कौन से डायलॉग की बात कर रही हूँ. अगर आपने अपनी 90s की मूवीज देखी है देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, दिस इज फ्रॉम द आइकॉनिक मूवी दामिनी, जिसमें विच फीचर्स मीनाक्षी शेषाद्री एंड ऑफ कोर्स सनी डियोल. जी हाँ जी हाँ जी, 2.5 किलो का हाथ वाले सनी डियोल. उन्हें इसी फिल्म में वो डायलॉग बोला था. तो डायलॉग मैं आपको आधा बोलूंगी, आपको बाकी का डायलॉग कंप्लीट करना है. ठीक है, तो शुरू करें. हियर वी गो. कोट ओपन. मिलते हैं तो सिर्फ तारीख तारीख तारीख. उसके आगे दो तीन लाइन और है. तो पूरा डायलॉग कंप्लीट करिए और मुझे पूरे इमोशन और पूरी फीलिंग्स के साथ वो डायलॉग कंप्लीट करके मुझे बोलिए. मिलते हैं तो सिर्फ तारीख तारीख तारीख. आगे क्या मिलता है, आगे क्या मिलता है? ठीक है, कंप्लीट द डायलॉग. माई नंबर इज 972-235-5555. 972-235-5555. गाइस दिस इज बॉलीवुड ट्रिविया एट दिस पॉइंट. ये किसी का हैप्पी बर्थडे नहीं हम पूछ रहे हैं, ये किसी का कौन है इस मूवी में एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं पूछ रहे हैं. हम पूछ रहे हैं कि आपको ये मूवी कितनी याद है. भाई मुझे तो ये मूवी इतनी अच्छे से याद है कि ये डायलॉग तो आप भूल ही नहीं सकते हो. लो आ गया कॉल. हाय, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो,
1: Hi, hi. Yes,
0: हाय, कैन यू हियर मी?
1: I can hear you.
0: ओके,
1: Is
0: ग्रेट.
1: this Ippi?
0: इट इज इपी. कैन या मेरे
1: Hello.
0: यस, कैन यू हियर मी?
1: Yes, I can hear you. Can I say the dialogue?
0: Yeah, but first you have to tell me your name.
1: It's Pooja.
0: पूजा. ओके पूजा, गो फॉर इट.
1: तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही. इंसाफ नहीं मिला, माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला.
0: वेरी वेरी क्लोज, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट डायलॉग. दैट इज सो क्लोज दो, इट्स लाइक 90% देयर.
1: ओके, ओके,
0: ओह थैंक यू फॉर ट्राइंग दो.
1: ओके,
0: हाय, थैंक यू फॉर कॉलिंग.
1: ओके,
0: हेलो, हेलो, आप कैन यू टर्न ऑफ द रेडियो बैकग्राउंड में? हेलो, हेलो, अच्छा ये शायद स्पीड डायल पे हो गया होगा. कोई बात नहीं. प्रीति, हाय, फनीशा रेडियो, थैंक यू फॉर कॉलिंग. कैन यू हियर मी?
1: Hi, can you hear me?
0: Yes, I can hear you. First of all, tell me your name.
1: Shreya.
0: Shreya, go for it.
1: Okay, so dialogue is, Chad sahab, milti tarik pe tarik, tarik pe tarik, tarik pe tarik, nahi milta, wo hai insaaf.
0: So close, almost so close. पहले वाले ने भी यही बोला था, but आप थोड़े से चूक जाते हैं. तो एक बार और try करेंगे. We will give you another try. तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वॉज करेक्ट.
1: जो नहीं मिलता वो बस एक इंसाफ, वही पता है मुझे तो.
0: अरे सो क्लोज, उसका ना थोड़ा वर्डिंग इधर उधर हो गया, बट क्लोज क्लोज क्लोज उसमें है. वी विल टेक द अदर कॉलर, बट थैंक यू फॉर ट्राइंग.
1: नो प्रॉब्लम, थैंक यू.
0: थैंक यू गाइस. अनफॉर्चुनेटली अभी नॉट अनफॉर्चुनेटली.
1: Take the other caller, but thank you for trying.
0: Hi, can you hear me?
2: Yes, I can hear you.
0: Okay, go for it.
2: Okay. तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला. मिला है तो ठीक
0: Yes.
2: है, तारीख.
0: Exactly. Wow, शानदार प्रदर्शन. Let's give a big round of applause for. आपका नाम?
2: सुबीन. सुबीन.
0: सुबीर.
2: Yeah.
0: सुबीर, सुबीम के लिए सब तालियां बजाएं. सुबीम को भी तारीख नहीं तालियां मिलेंगी आज तो.
2: थैंक यू.
0: बोलो बोलो बोलो. पिज्जा किचन में पूरे इंसाफ के साथ आपको गिफ्ट वाउचर भी दे रहे हैं $10 का, और हम आपको तालियां भी दे रहे हैं. आपको इंसाफ तो मिल ही रहा है, तो मतलब वी आर सो मच बेटर, बेटर देन इंडियन कोर्ट्स एट दिस पॉइंट, है ना? व्हाट डू यू से?
2: आई थिंक सो, आई थिंक सो.
0: तो गाइस कीप स्टेइंग ऑन द लाइन. सुबीम प्लीज स्टे ऑन द लाइन, और मैं गाना लगाती हूँ. आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन राइट आफ्टर दिस सॉन्ग. ठीक है?
2: ओके, श्योर, थैंक यू.
0: Okay guys, enjoy the song. We will be right back after the song.

भाई आपको पता है किस टाइप के लड़के लिखेंगे ऐसे चांद बालियों पे गाना, कि आपके झुमके पे भी गाना आएगा. सो रोमांटिकली इतना प्यारा सा गाना लिखा है भाई. पीपल लाइक सुबोध फ्रॉम दिल चाहता है, कि उसको इतना प्यार था और लोगों ने उसका मजाक ही बना दिया यार. पता है आप, वो हमने बोला कि चलो उसको 5 महीने की एनिवर्सरी याद थी, लेकिन थिंक अबाउट इट, उसको सिर्फ 5 महीने की एनिवर्सरी याद नहीं थी और बहुत कुछ भी याद था. कि अच्छा, हम जब वो ड्राइव पे नहीं जा रहे होते हैं, वो ड्राइव पे जाते कहते हैं यहाँ पे मैंने तुमको पहली बार हाथ पकड़ा था, यहाँ से मैंने बलून खरीद के दिया था, यहाँ पे मैंने तुम्हें गुलाब दिया था. मतलब हाउ मच दैट गाय वर्शिप्स दिस गर्ल. और हम लोग यहाँ पे एज अ गर्ल, आई एम टेलिंग यू, वी वेट फॉर दैट, यू नो, उस तरह का प्यार, दैट समबडी इज लाइक कंप्लीटली फिदा ओवर यू एंड इज एक्चुअली टेकिंग सो मच एफर्ट. और ये हम लोगों ने इसी को बना दिया रेड फ्लैग. ये हमारे दिमाग में ठूस ठूस के भरा हुआ है कि नहीं यार, ये तो बहुत चेप है. भाई चेप नहीं है, इसको बोलते हैं समबडी हु वर्शिप्स द ग्राउंड दैट यू वॉक ऑन. ये वाले होते हैं ऐसे लड़के जो कहते हैं वो वाला डायलॉग कि अरे जाने मन, ये पैर जमीन पे मत रखो नहीं तो तुम्हारे पैर गंदे हो जाएंगे, और वे तुम्हारे मतलब चलने के लिए अपना कोट बिछा देते हैं. वी ऑल वॉन्ट दैट काइंड ऑफ प्रिंसेस ट्रीटमेंट. आई मीन कम ऑन, झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है? वी डीप डाउन वी ऑल वॉन्ट इट. तो वाई आर वी मेकिंग फन ऑफ सुबोध? दूसरी चीज आपने नोटिस करी है, जब वो कहता है समीर की ब्रो कम लेट्स गो पार्टी, ठीक है, हम लोग यहाँ पे तुम्हारी 5 महीने की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, लेट्स गो पार्टी. फिर सुबोध कहता है नहीं नहीं सॉरी भाई, मुझे 10 बजे सोने जाना है. हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली रिस्पेक्ट दैट स्लीप टाइम? यू नो आई नो अ लॉट ऑफ यू डू. 10 बजे सोना, चलो 10 बजे नहीं, 10:30, 11 बजे सोना इज ऑल्सो प्रिटी प्रिटी इनक्रेडिबल. कि भाई सोने का टाइम फिक्स्ड है. क्यों? क्योंकि सुबह उठ के उसमें इतना डिसिप्लिन है कि वो सुबह उठ के योगा करता है, फिर अपना कार्डियो करता है, फिर 8 बजे वो ब्रेकफास्ट करता है. मतलब हाउ डिसिप्लिन्ड इज दैट गाय? इजन दैट लाइक अ लाइफ गोल फॉर लाइक सो मेनी ऑफ अस अडल्ट्स? लाइक आई ट्राई टू स्टिक टू अ रूटीन, बट मेरा रूटीन हमेशा टूट जाता है बिकॉज ऑफ द लाइन ऑफ वर्क दैट आई एम इन. हाउ एवर, आई नो सो मेनी ऑफ यू आर स्ट्राइविंग टू अचीव दैट रूटीन, एंड आज की डेट पे हम उसको इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई इसका तो रूटीन बड़ा सही है, तुम्हारा रूटीन बहुत अच्छा है. मुझे कई लोग कहते हैं जब मेरा रूटीन सही होता है ना, कहते तुम्हारा रूटीन बड़ा अच्छा है. तो हमने इसका मजाक क्यों उड़ाया? उसका उस मूवी में समीर वो सो इमेच्योर कि उसने उसका नाम दे दिया टाइम टेबल. मतलब बट थिंक अबाउट इट, वो टाइम टेबल इज लाइक द लाइफ गोल, इज लाइक द डिसिप्लिन. अगर वो, पता क्या होगा उसका फायदा, देखो जब बूढ़ा हो जाएगा ना समीर, समीर तो अपनी दारू पिएगा, ड्रिंक्स करेगा, पार्टी जाएगा एट द एज ऑफ 45 एंड 50, एंड उसका पेट बड़ा सा निकला होगा क्योंकि दारू वालू खा पी के एंड देन अनहेल्दी फूड हैबिट्स और लेट नाइट्स सो के, ऑब्वियसली ही इज़ नॉट गोइंग टू बी एबल टू मेंटेन दैट रियली फिट बॉडी दैट ही हैज़. हाउएवर सुबोध, हु हैज़ दिस परफेक्टली बैलेंस रूटीन, इज गोइंग टू बी अ कैच एट द एज ऑफ 45 और 50 बिकॉज ही डज हिज एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे एंड ही वॉचेज आउट फॉर हिज हेल्थ एंड ही इज गोइंग टू बी मेंटली एट पीस. इज इन दैट अमेजिंग? हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? नहीं, अभी सोच लो.

गाइस वो गाना बहुत अच्छा है, मुझे पता है, लेकिन हम वो गाना थोड़ी देर में लगाएं क्योंकि अभी मेरे पास बड़ी प्यारी सी एक छोटी सी बच्ची की रिक्वेस्ट आई। वो बड़ी देर से मुझे कॉल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि जब हमारा गिव अवे भी चल रहा था तभी भी वो कॉल कर रही थी, उसके बाद भी इतनी कॉल्स आ रही थी और हर बार ही मैं उठा रही थी। एवरी टाइम आई वॉज आंसरिंग द कॉल मुझे दूसरी तरफ से कोई लाइन, आई कुडंट हियर एनी वन एंड इट केप गेटिंग डिसकनेक्टेड, केप गेटिंग डिसकनेक्टेड। तो मुझे लगा भाई कोई क्रैंक कॉल तो नहीं कर रहा, कोई मेरे साथ प्रैंक तो नहीं खेल रहा है। तो मुझे एक्चुअली मुझे गुस्सा आने वाला था कि कौन बोल रहा है। हाउएवर देन आई फाइनली व्हेन द कॉल कनेक्टेड फ्रॉम द अदर साइड आई हियर दिस रियली स्वीट लिटिल गर्ल्स वॉइस कॉल, अनाया, अनाया स्वीट हार्ट, दिस वन्स फॉर यू बेबी गर्ल, आई होप यू एंजॉय द सॉन्ग, यू आर जस्ट लाइक द बेबी डॉल, जस्ट लाइक इन द सॉन्ग।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
4: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
5: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
7: जिंदगी एक रंगमंच है
8: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
9: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com.
10: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
11: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
12: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
13: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funasia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
14: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
15: चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.

Guys, we are back. This is Ippy the Hippie, and you're listening to Funasia Radio 104.9 FM, and this is my show. An evening in Dallas. So, guys, agar aapne pura hafta mera show suna hai, then you have probably figured out that we talk about the typical anxious and avoidant attachment styles. That's right. Yesterday, I was analyzing it from the characters in Cocktail. Today, I was watching. What do you call that movie? Jab We Met. It is one of my all-time favorite movies. Kitna funny hai. Uska jab wo shuru mein shuru hota hai na, Geet ka character itna funny hai. Usi ka bilkul opposite is Aditya. Usko samajh nahi aa raha hai life mein kya ho raha hai. So today we are going to basically understand the same concept of anxious and avoidant attachment styles through the eyes of Geet and Aditya. So have you ever been in a place where you feel like ki nahi, you wanted the answers? You wanted the reassurance and you wanted to know ki where is this going? Like, I mean, forget about where is this going also. You just wanted to know ki this person, you know, this person is showing you their feelings of love. Wo dikha raha hai aapko ki achha nahi, wo mere se pyar karta hai and all of that through all the gestures. However, suddenly, one fine day, they get up and they're like, nahi. मैं इसको रिप्लाई नहीं करूंगा, गायब हो जाऊंगा इसकी पूरी जिंदगी से, मैं दुनिया से ही गायब हो जाऊंगा. मतलब दुनिया से तो नहीं, खैर वो ज़्यादा एग्जैजरेट मैंने बोल दिया, बट लेकिन इनका जो सोशल दुनिया है, वेदर इट्स सोशल मीडिया या जो भी है, सडनली वहां से आप गायब हो जाओगे. तो इतने दिनों तक सब सही चल रहा था, लेकिन वन फाइन डे बूम दे आर गॉन. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल एंग्शियस एंड अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स. तो एंग्शियस वाला पूछता है कि भैया मैंने किया क्या, व्हाट डिड आई डू इन लाइफ, एंड आई जस्ट वॉन्ट आंसर्स. आई तो डिडंट इवन डू एनीथिंग. बट द अवॉइडेंट, वो तो भागता है, द अवॉइडेंट कीप्स रनिंग अवे. That's the pattern, you know. Yesterday we were talking about patterns. Today we are going to analyze. Now if you look at the movie, Jab We Met, aapko first instance mein dekhkar hi lagta hai ki, okay, Geet, the extra chirpy, okay, she talks, mane, she talks a lot. Not just, hello, how are you? She's kind of like me, I mean, to think about it. But मेरे को तो खैर पैसे मिलते हैं बात करने के लिए. वो तो मुफ्त में बातें करती है, मुफ्त में सबकी हेल्प करने चली आती है, मुफ्त में एडवाइस देती है, और उसको ये नहीं पसंद आता. लेकिन जब वो उसको एडवाइस देता है कोई, तब उसे पसंद नहीं आता, ठीक है? क्योंकि आपको याद है वो सीन जब उसका लगेज छूट जाता है और स्टेशन मास्टर उसको बोलता है, भाई लड़कियां जो है खुली तिजोरी की तरह होती है, वही, और वो कहता है, भाई बुढ़े तेरे को ये एडवाइस देने के लिए कि फ्री के, फ्री में दे रहा है कि पैसे मिलते हैं इसके? कहता है कि नहीं, ये तो मैं फ्री में दे रहा हूँ. कहता है, गुड, मेरे पास चिल्लड़ नहीं है तुम्हें देने के लिए. याद है ना आपको वाला डायलॉग? क्या आइकॉनिक डायलॉग था. वन डे आई विल स्टील दैट एंड से इट टू समवन. लेकिन गीत की सारी फीलिंग्स जो होती है वो जोर जोर से बाहर से, मतलब शी इज लाउड, शी इज एक्सप्रेसिव, एवरीथिंग इज देयर. आदित्य ऑन द अदर हैंड इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट. वो ना बोलता है. द मूवी स्टार्ट्स विद अ रियली सैड, डिप्रेस्ड, ट्रॉमा सफर्ड आदित्य, ठीक है? नाउ द थिंग इज आदित्य रियली एन अवॉइडेंट, और इज ही जस्ट काइंड ऑफ लाइक डीलिंग विद ट्रॉमा? क्योंकि बाद में तो ही शोज अप, है ना? वैसे अवॉइडेंस भी वही करता है, दे डू शो अप इन द एंड, बट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई एंड स्टडी. आदित्य वांट्स टू डिसअपीयर फ्रॉम लाइफ एंड फिगर आउट हिज प्रॉब्लम्स एंड फाइंड आउट हिज सॉल्यूशंस. उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया, शी गॉट मैरिड, हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट हिम फॉर अनदर मैन, हिज मॉम, हिज डैड डाइड, देन हिज मॉम वॉन्ट्स टू टेक ओवर द बिजनेस, द लॉयर्स आर फाइटिंग, ही इज डीलिंग विद सम वर्क स्टफ, ओके, एंड टू रन अवे फ्रॉम ऑल दैट ही गेट्स ऑन अ ट्रेन. वो नहीं पता कि वो ट्रेन कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, उसके पास ना टिकट है, वो बस चढ़ जाता है. कहता है, ये चलो, दिस लुक्स लाइक अ गुड ऑप्शन, लेट मी रन अवे फ्रॉम दिस लाइफ, ओके. एंड देन गीत ऑन द अदर हैंड, शी इज लाइक सुपर प्रेजेंट, राइट? एंग्शियस एंड देन अवॉइडेंट, राइट? थिंक अबाउट इट. तो हम आगे भी बात करेंगे इन दोनों के बारे में, बट फर्स्ट दिस सॉन्ग.

एंड वी आर बैक. सो अगर आप दोनों की पैटर्न्स देखो, दे आर समहाउ बोथ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. एक डज टू मच कि उसकी ट्रेन छूट रही है तो मैडम खुद ट्रेन से उतर गई उसको मदद करने के लिए. यू नो पीपल प्लीजर वाली जो हम बोल नहीं रहते, शी टॉक्स टू मच बिकॉज मे बी शी इज ट्राइंग टू हाइड हर ओन ट्रॉमा. क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो उसे बॉम्बे में छोड़ के मनाली चला गया और ये मैडम इसके पीछे पीछे भाग रही है मनाली. ठीक है, लेकिन वो दिखा नहीं रही है कि लाइक शी इज ऑब्वियसली हर्ट. शी इज लाइक नहीं यार, मैं उसको मनाऊंगी, वो फट से मान जाएगा और विल बी हैप्पीली एवर आफ्टर. वो भाग रही है उसके पीछे, शी इज हाइडिंग हर पेन, लेकिन उसमें भी वो स्माइल करी है, खुश है. शी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस आदित्या. आदित्या यहाँ से ट्रेन से उतर गया, मैडम उसके पीछे पीछे भाग रही है कि देख भाई तेरी ट्रेन छूट रही है, चल चल चल. शी इज ऑफरिंग हेल्प दैट nobody asked फॉर. शी इज गोइंग आउट ऑफ अ वे टू हेल्प दिस अदर guy दैट nobody asked फॉर. why? बिकॉज इट्स her पीपल प्लीजिंग mentality कि नहीं यार, इफ आई हेल्प them देन मे बी यू नो they'll बी नाइस टू मी एंड they'll स्टिक अराउंड एंड यू नो हम लोग ऐसे ही करते हैं. लेकिन यू नो ऑन द अदर हैंड आदित्या इज लाइक ब्रो मैंने तो नहीं बोला था तुम मेरे पीछे आओ, तुम क्यों आ रही हो मेरे पीछे, मैंने बोला था ट्रेन से उतरो, अब मैं तुम्हारे इसमें चक्कर में फंस गया हूँ, अब हम करेंगे रिकॉर्ड क्या बोलते हैं, अब हम ड्राइव करेंगे, सॉरी क्या बोलते हैं, क्या रतलाम तक ड्राइव करेंगे, वहां से दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके. तो ये थी इनकी इनकी अटैचमेंट स्टाइल्स. ठीक है, गीत इज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स हु द मोमेंट शी एंटर्स द रूम शी एक्चुअली एंटर्स द रूम. शी हैज ओपिनियंस, उसके प्लान है, ड्रीम्स है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी बढ़िया है. शी हैज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम टेलिंग यू अबाउट एनी ऑफ देम. वो खुशी खुशी अपनी सारी दिल की बातें खोल के बता देती है. शी लव्स इंटेंसली, शी इमेजिन्स इंटेंसली, शी स्पीक्स ऑल्सो इंटेंसली. शी वॉन्ट्स लाइफ टू रिस्पॉन्ड विद इंटेंसिटी. And that's what makes Geet so lovable. But here's a question. Kya Geet secure hai? Nahin hai. Because being expressive is not the same as being secure. Being enthusiastic is not the same as being emotionally regulated. Sometimes it is just a mask. And wanting love isn't the same as knowing how to receive love. Geet's attachment to Anshuman especially, jo uska ex-boyfriend tha, becomes even more interesting. Kyun? Because she doesn't just fall in love with him, she imagines and builds a whole future around him. She imagines what their future will look like. She invests emotionally before she has enough evidence that the other person is investing at the same level. And jab Anshuman us tarah se respond nahi karta, uski duniya aise toot phoot ho jati hai. Pura uska jo sapnon ka mahal hai, aise choor choor choor choor ho jata hai. And this is a very important distinction. Anxious attachment isn't simply ki I love you too much. But it is like, I don't feel safe unless I know that you love me back. And those are two very different things. You can be the loudest person in the room and be full of energy and magnetic, but still be terrified of being abandoned, you know. And I'm sure there's a lot of people in the audience who are listening to this right now who relate to what I'm saying.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
6: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
7: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं।
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं।
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं।
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
0: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? Key Person Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shop.

So why is Geet and Aditya's chemistry so iconic? ठीक है, तो अब movie अगर आप देखो, why is it so iconic? एक है attachment, एक anxious attachment है, एक avoidant attachment है, but ये तो हमने हमेशा ही देखा हुआ है, आपने अपनी life में भी देखा हुआ है. तो इसका main चीज़ पता क्या है? Anxious attachment क्या है? दो type होते हैं, one the one who's still protective, तो इसीलिए somebody is holding back, but Geet is like unhinged, ठीक है? वो तो उसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है. जैसे ही वो मिलते हैं, गीत इज लाइक इमोशनल सनलाइट, आदित्य इज द इमोशनल विंटर, और ये तो इमोशनल सनलाइट है. समर एंड विंटर का फर्क है पूरा. ओके, दिस इज वेयर द डायनेमिक बिकम्स हिलेरियस, बिकॉज गीत डजंट अंडरस्टैंड द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट आदित्य डज. यू नो, आदित्य की बाउंड्रीज जो है गीत को समझ नहीं आ रही है, पता नहीं है क्यों, व्हाई इज ही डूइंग दैट. ओके, शी डजंट अंडरस्टैंड इट. Because she doesn't know that she's anxiously attached. So she's just like, bhai, main toh aise hi hoon, this is how I am. And Aditya doesn't understand Geet's emotional openness. Aditya kehta hai, bro, what is up with this girl? What's her deal? She talks, he stares, she asks questions, he avoids them. She keeps moving towards him. और वो बार बार दूर भाग रहा है उससे. एंड देन समथिंग हैपन्स बिकॉज समटाइम्स एन एंग्शियस अटैचमेंट एंड एन अवॉइडेंट अटैचमेंट दे डू फाइंड ईच अदर वेरी वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज दैट्स वॉट ब्रिंग्स देम टुगेदर. दे आर सो ऑपोजिट दैट दे गेट क्लोज. ओके, बिकॉज दे ऑफर ईच अदर समथिंग दैट इज कम्प्लीटली अनफेमिलियर. द एंग्शियस पर्सन थिंक्स कि अरे ये पर्सन तो बड़ा मिस्टीरियस है, वाओ, व्हाट इज सो मिस्टीरियस अबाउट देम. And this means the other person says ki bhai iski energy to itni amazing hai, I feel something, I am like totally, you know, like magnetized by their energy, this person is so magnetic. Okay, and then the relationship becomes emotionally real. The moment it gets real, that's when the cycle begins. One person gets closer, the other one moves away. One person gets closer, the other one moves away. The closer you move to them, the further they move away. That's how it always happens. Does it sound familiar? Maybe you've lived it. I can tell you for a fact that I have 100% lived it. 100% lived it. So, you know, what do you do? By the end of it, you pretend that you don't care, because when things fall apart, then you're like, ah, whatever, another failed relationship. Do hi mahine ho gaye, a breakup ho gaya, jo bhi hai. But लेट्स सिंप्लीफाई द साइकिल. अब हम वो कैसे करेंगे उसका साइकिल को सिंप्लीफाई, थोड़ा और एनालाइज करेंगे आफ्टर द सॉन्ग.

तो गाइज आपको पता है ना, श्री कृष्णा ज्वेलर्स फ्रिस्को में खुल चुका है, देयरफॉर यू शुड डेफिनेटली हेड डाउन। राखी आने वाली है। अपने सिबलिंग्स के लिए अगर आपको कुछ अच्छे से गिफ्ट खरीदना है तो ज्वेलरी, रिमेंबर दैट ज्वेलरी इज नॉट जस्ट एन एक्सेसरी, इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी। चाहे आप क्लासिक गोल्ड डिजाइन ढूंढ रहे हैं, स्पार्कलिंग डायमंड्स या इंट्रिकेट कुंदन टू स्टनिंग पोल्की कलेक्शंस, every piece is crafted to celebrate life's special moments. They are open in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafting fine jewelry and cherished moments since 1967.

गाइस, चेहरे का ध्यान रखते रखते अपने दिल का भी ध्यान रख लेना एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, क्योंकि वो आपकी अपॉइंटमेंट पूरे 30 मिनट तक लेंगे. ठीक है, दे अंडरस्टैंड दैट अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आप सिर्फ पेशेंट नहीं है, यू आर लाइक फैमिली. चाहे आप एंग्जाइटी केयर ढूंढ रहे हैं, फाइब्रो स्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड मोर, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर. ओके, सो स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे. 214-666-6259, दैट इज राइट. इट इज 9:24 ऑन द क्लॉक एंड दिस इज स्टिल इपी द हिपी विद यू हियर ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. And you are listening to my show, An Evening in Dallas. So guys, don't worry about it. हम लोग एक गाना और सुनते हैं, बिकॉज गाने का मूड है, या फिर अब थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं. यू नो वॉट, गाने तो हम सुन ही रहे हैं. आई फील लाइक इट्स टाइम टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन. ठीक है, तो होता ये है कि गीत की दुनिया कब कोलैप्स होती है, जब वो अंशुमन के घर पहुंच जाती है. पर तो वो अपने अंशुमन के लिए इतने सपने देख रही होती है, हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग वो करेंगे, व्हेन आई गो टू मीट हिम मैं उसको सॉरी बोल दूंगी और सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन. बट रिमेंबर, सॉरी डज नॉट चेंज पैटर्न्स. अब अंशुमन भी भाग रहा था, अब तो अंशुमन को चाहिए ही नहीं था. ठीक है, तो जब गीत जाती है उसके पास और अंशुमन उसके मुंह पे उसको रिजेक्ट कर देता है, फिर कुछ हो जाता है. गीत को रियलाइजेशन होती है, वो चुप हो जाती है. उसका जो पूरा जो उसका जो व्हाट यू कॉल इट, जो उसकी बाउंड्री थी, पूरा जो उसका सिस्टम था बाय विच शी प्रोटेक्टेड हरसेल्फ, दैट इंटायर सिस्टम, दैट इंटायर वॉल, द इंटायर सिटी शी बिल्ट, इट कम्स क्रैशिंग डाउन. द गर्ल हु हैड एन आंसर फॉर एवरीथिंग एंड शी डजंट रियली नो वॉट टू से नाउ. शी वॉज रनिंग टूवर्ड्स लव, नाउ शी स्टॉप्स बिकॉज नाउ शी डजंट हैव अ गोल. उसके पास कहीं जाने के लिए जगह ही नहीं बचती. वो कहाँ जाएगी, घर जाएगी, वापस बॉम्बे जाएगी, वो सोच नहीं पाती, क्योंकि उसका लाइफ का अल्टीमेट पर्पज यही था कि उसको अंशुमन से शादी करनी थी. और उसके बाद उसकी हीलिंग वहां से शुरू होती है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑल दीज ईयर्स शी इज नॉट चेजिंग एन एक्सटर्नल गोल, शी इज चेजिंग हीलिंग, शी इज रीबिल्डिंग हर फोर्ट. ओके, एंड हाउ डज शी बिल्ड, शी इज नॉट विदड्रॉइंग हर सेल्फ फ्रॉम एवरी वन, इट्स नॉट लाइक वो अवॉइडेंट बन जाती है, बट शी इज लाइक आई डोंट रियली केयर एनी मोर, व्हाट्स द पॉइंट. वो आता है आदित्य, उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है, वो कहती है कि क्या फायदा इसका, व्हाट इज द पॉइंट. That is the main thing. She realizes that there's no point to any of this. Geet doesn't become less Geet. She just becomes more grounded. Because secure attachment, pata hai kya hai? Secure attachment wo nahi hai ki I don't need anyone. I'm totally fine all by myself. That is avoidant. Ki when you keep running away from everyone and you say that, nahi, I don't need anyone. I'm totally fine by myself. Secure attachment is I can love you and I can be with you without actually losing myself in the process, okay? That is a sign of a healthy individual. That is a sign of a person who realizes their attachment patterns, especially for someone like Geet, and I'm sure you all can also relate to. Agar aap apni relationship mein apne aap ko kho rahe ho, jaise aap apni shaadi mein aapka koi astitv nahi hai, aap everything is about your husband or your wife, whoever, or your boyfriend or your girlfriend, it doesn't matter. Lekin aap apne khud ke goals nahi hai, khud ki, and it doesn't have to be like career goals, it doesn't have to be financial goals, it can just be, you know, goals about yourself, like I don't know, going to the gym or wearing better clothes or learning an instrument or just learning how to cook for that matter. Or not because you want to cook better for your husband or your partner, but you want to be a better cook just for the sake of being a better cook.

0: Sagar.
1: Guys, that was Shafqat Amanat Ali Khan with Aankhon Ke Sagar. अगर आपको नहीं पता, उनका पाकिस्तान में बड़ा अच्छा सा बैंड था कॉल्ड फ्यूजन, बट उनकी जो स्पेलिंग थी ना फ्यूजन की, वो अलग थी. इट वॉज लाइक फ्यूजॉन. तो आगे बढ़ते हुए गाइज, आपको पता है कि टैक्सेस इज अ कॉम्प्लिकेटेड स्टफ. अगर आपने टैक्स एक्सटेंशन फाइल कर ली है एंड यू स्टिल हैवंट फिगर्ड आउट हाउ टू डू इट, देन प्लीज गेट इन टच विद एजी फिनटैक्स, बिकॉज दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टेलर टू योर नीड्स. चाहे आपको बुक कीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन या जो भी है, इफ यू नीड एनी हेल्प विद एनी ऑफ दैट, just reach out to them. They help you keep your finances organized, compliant and future ready. They are trusted, efficient and committed to your success. So call 469-942-9888 or visit agfintax.com. theek hai, to hum jaise baat kar rahe the Aditya aur Geet ke bare mein, theek hai, ab unki attachment cycle jo hai usko real life mein analyze karte hain. Let's bring this outside of Bollywood, theek hai. Because maybe right now you're thinking, oh my God, this is totally like my relationship. Oh my God, I am this person. Maybe you have experienced this. Maybe you are pursuing someone, or ya fir someone is pursuing you. You are a little distant. Theek hai? Maybe you are trying to latch on to someone so tight, and jitna aap usko tightly pakade utna wo dur ja raha hai. Then they become interested. Jaise aap unki उनको थोड़ा ढीला छोड़ते हो, दे बिकम इंटरेस्टेड, देन दे स्टार्ट रेसिप्रोकेटिंग, यू बिकम इन इमोशनली इन्वेस्टेड, यू स्टार्ट थिंकिंग ओ मे बी दिस इज रियल, एंड देन सडनली दे पुल अवे अगेन. यू परस्यू हार्डर, यू टेक्स्ट मोर, यू एक्सप्लेन मोर, यू गिव मोर, यू बिकम मोर अवेलेबल, देन दे बिकम इवन डिस्टेंट, एंड दिस इज लाइक दिस एंक्शियस अवॉइडेंट ट्रैप. एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग, इट फील्स लाइक केमिस्ट्री, इट फील्स लाइक फायरवर्क्स, बट क्योंकि अनसर्टनिटी में पता क्या होता है, जब आपको नहीं पता ना कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इट क्रिएट्स एड्रेनलिन, इट क्रिएट्स लाइक दिस डोपामाइन वाली फीलिंग. अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट चेज दैट क्विक सैटिस्फैक्शन. यू हैव यू एवर हर्ड ऑफ दैट टर्म, डिलेड ग्रेटिफिकेशन? समटाइम्स द लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप्स और द हेल्थीएस्ट रिलेशनशिप्स में यू हैव टू प्रैक्टिस दैट डिलेड ग्रेटिफिकेशन. Occasional affection feels incredibly powerful. That is why a lot of people, especially in my generations, they are going towards, you know, dating apps and this jeevansathi.com quick satisfaction. Okay, you're waiting for that next hit of reassurance and that next hit ki acha ye person se mujhe thodi der ke liye affection mil jayega. Oh, when they are so good, it's so good. When they are good, it's so good. Exactly, that's a problem. Intermittent reinforcement can make inconsistency feels like chemistry. Kyunki it's like the push and pull, the push and pull. Aapko uska pata nahi hota na, it's not consistent. Then that can feel like chemistry because aapko it's like a hot and cold treatment. Consistency can feel boring when your nervous system has learned to associate love with uncertainty. Okay? And that is something worth thinking about aaj raat ko. Every time you're in a relationship, if you are in and out of relationships a lot, or you're trying to find your person, or in fact, even if you are in a relationship, a healthy one, do you have these kind of patterns? This is something to think about. Okay? Ye gaana sunte and then we'll be back.

तो गाइज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं. बाय द एंड ऑफ द मूवी यू रियलाइज दैट दे एक्चुअली हैव लर्नड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नॉट दैट दे फाउंड ईच अदर एंड देन दे रियलाइज कि अच्छा हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं. वाओ हैप्पीली एवर आफ्टर एंड दादाजी इज हैप्पी एंड हमारे दो दो बच्चे हैं एंड एवरी वन इज हैप्पी. नहीं दैट्स नॉट द मॉरल ऑफ द स्टोरी. ऑफकोर्स हम वो देखते हैं हम सोचते हैं कि या दैट इज़ यू नो हैप्पी एंडिंग और वट एवर. सारी मूवीज में ऐसे ही होता है. लेकिन थिंक अबाउट इट द बिगेस्ट लेसन दैट यू सी इन ऑल ऑफ दिस इज वॉट गीत एंड आदित्य बोथ ऑफ देम लर्नड बाय हीलिंग देयर ओन पैटर्न्स. ठीक है गीत्स बिगेस्ट लेसन इज नॉट दैट शी हैज़ टू चेज अंशुमन और आदित्य और फॉर इन लव विद समवन एल्स. द हर बिगेस्ट लेसन इज फॉलिंग इन लव विद हर सेल्फ फाइंडिंग हर सेल्फ आउटसाइड ऑफ ए रिलेशनशिप. उसने जो अपनी पूरी लाइफ की पूरी जिंदगी रिलेशनशिप के चारों तरफ ही बना दी थी ना. हर इंटायर लाइफ हर इंटायर गोल जस्ट रिवॉल्व अराउंड अ रिलेशनशिप. बट देन शी लर्न टू काइंड ऑफ फाइंड हर सेल्फ. ओके बिकॉज बिफोर शी कैन हैव हेल्थी लव शी हैज़ टू स्टॉप मेकिंग अनदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हर इमोशनल आइडेंटिटी एंड दैट्स द एंक्शियस अटैचमेंट वुंड. ओके Tell me that I'm enough. Tell me you're staying. Tell me that I'm special. These are things like normal and anxious attachment person will says. But instead of that, you're no longer just relating to the person. You're actually observing them. You're monitoring them. And then you choose yourself. Okay? You know, she learns to choose herself. She's living on her own. She's a career woman. I mean, theek hai, she's upset because, you know, she's distanced herself. She's again trying to protect herself. एंड आदित्य का क्या लेसन था. अवॉइडेंस कैन लुक लाइक इंडिपेंडेंस. इट यू नो अवॉइडेंट पीपल दे विल बी लाइक आई डोंट नीड एनी वन आई एम फाइन आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट गिव मी स्पेस. ठीक है दीज आर दी अवॉइडेंट पीपल. और लाइक एवरी टाइम थिंग्स गेट हार्ड दे लाइक ओ आई कॉन्ट डील विद दिस राइट नाउ आई नीड माई स्पेस आई नीड टाइम टू फिगर दिस आउट. स्पेस इज हेल्थी डिसअपियरिंग इजेंट. इंडिपेंडेंस इज वेरी वेरी हेल्थी. ओके बाउंड्रीज आर हेल्थी. Walls aren't. If you are just creating a wall and just shutting the entire world out, there is a huge difference between I need an hour to process this and actually communicating that to someone like your partner versus you're just going to disappear like altogether, just vanish. The first is regulation and the second can become avoidance. So agar aap keh rahe ho ki nahi, I need time to process this, but you actually communicate like, hey, I get it. I'm dealing with so and so. I promise I'm going to take two steps away. I'm taking time off for a week. I need to figure out some things. I'll come back and we can talk about it. Okay? And then you're like, okay, now I know what's going on. However, if you just vanish for 2 weeks without any texting, without anything, then that's avoidance. Okay? What makes Geet and Aditya work? Why does this relationship ultimately work? Because neither of them stays exactly where they started. They are both two different people. They are completely different people by the end of the movie. Aditya becomes more emotionally unavailable and Geet actually becomes more grounded. And that's a secret. Relationships don't work because two broken people magically complete each other. That's called trauma bonding, guys. We are not trauma bonding over here. They work because they can increasingly become capable of meeting each other in the middle, that's the key question here, key point, without abandoning each other. For example, Geet ka main lesson tha, hey, I can love you without just frantically chasing you. And Aditya learns ki, I can love you without running away. And you will respect my space. And Geet is like, sure, I will totally do that. That is secure attachment.

गाइस, इट इज 9:56 ऑन द क्लॉक. मैं लास्ट गाना बजा के मैं निकलने वाली हूँ यहाँ से. फिर मैं आपसे मिलूंगी मंडे को. लेकिन जाने से पहले, आपको पता है ना, तनिष्क पे डायमंड्स आर जस्ट फॉर एवर, दे आर मोर इरेजिस्टिबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स. इंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट. सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क. विजिट तनिष्क इन फ्रिस्को. और मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक गाना लगाऊं, क्योंकि जिमरान ने अभी हमको कॉल किया और बोला कि क्या आप प्लीज़ हमारे लिए ये गाना लगा देंगे, और मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ ये वाला गाना. तो स्टिक अराउंड, मैं वापस मंडे आऊँगी आप लोगों से मिलने. और जस्ट इन केस मैं नहीं, मैं आऊँगी, मैं क्यों नहीं आऊँगी, मैं हमेशा ही आऊँगी. तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए एंड आई विल टॉक टू यू in about 3 days, and then we will talk about more movies and relationships and related altogether. So this one goes out to Zimran.

Happy music, happy people. Only on Fun Asia Radio.

0: KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.
1: He's got very little time.

0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Fun Asia
2: So ruko jara sabar karo
3: Agla gana full vibe badalne wala hai Stay tuned to Fun Asia

0: हाँ भाई सेठी,
1: हाँ जी मनी पाजी,
0: पहुंच गए हैं।
1: पहुंच गया मैं। अरे अरे अरे अरे पाजी, घर तां बड़ा सही है, इत्थे तां पार्टी करनी बनती है।
0: ओ पार्टी दी कसरत तेनू हाले, पार्टी कर दे है तू।
2: पाजी, उस गोरे से घर लेके बाद एक बार भी यहाँ आए हो?
0: हो गए, बहुत साल हो गए, दादी नू मिलन आया सी एक बारी।
1: पाजी, तुहाडी दादी मैनू बिल्ली वर्गी क्यों लग रही है?
0: तू लगता है तू पैग लाए होया। तू
3: इधर कर, तू सो जा, आराम कर।
1: नहीं पाजी, एक ही बोतल पीती है, ज्यादा नहीं पीती है, पर दादी बिल्ली वर्गी लग रही है।
3: ओए मेरी दादी नहीं है, उसे गोरी दी दादी होनी है। ओए तू पै जा, ओए तू सो जा,
0: मेरी फ्लाइट है, तू सो जा।
1: पर दादी

0: आपके सुहाने सफर का साथी फनीशिया रेडियो।
1: We'll be right back.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beta, 95% aaye?
5: Haan, mummy.
4: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
6: Mera?
4: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
8: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फन एशिया रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi USA, this is Imran Hashmi.
4: Hi, this is Disha Patni.
3: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio.
4: One of Bollywood's most loved cult classics returns.
3: I'm back as Shivam Pandit, and this time the emotions are deeper. The music is set to touch every heart once again. And the legacy continues. Witness Awar Appan 2 in cinemas from 14th August.
5: बात आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फन एशिया रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट्स से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।
2: Yay!

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड। Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu.

पार्टी करो कहना क्यों नहीं मानते जीने के दिन होते हैं बस चार इंसान के शर्माना और घबराना ये दोनों चीजें छोड़ दो रूल्स और डांस फ्लोर ये दोनों चीजें तोड़ दो शुभ होए बादशाह

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
1: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
3: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: Coming into a million hearts. 104.9 Number one hit station.
1: तुम क्या मैरिनेट हुए बैठे हो यार?
2: PVS मॉल में बबीता आ रही है।
3: कौन बबीता यार?
2: कौन बबीता? बबीता कुमारी जहाँ पना? आपकी बेगम बब, मेरी भाभी, वही बबीता जिसके हाथ पे मेहंदी से लिखा जाना था बबुआ सिंह।
3: मोहब्बत देख गुड्डू, तेरे भाई के दफन होने से पहले अपना आखिरी सलाम देने चली आई पूरी की।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: IT is the spice of our station.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: अजी सुनते हो?
3: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
4: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
5: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Funasia Radio.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है।

0: खुदा करे जिंदगी में ये मकाम आए, तुझे भूलने की दुआ करो और दुआ में तेरा नाम आए।
1: रुको जरा, सबर करो।
2: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: कब से उसको ढूंढूं।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Funasia
1: Hi this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डैलस. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Abhe, jaldi bol, kal subah Panvel nikalna hai.
9: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त. ओनली ऑन फनेशिया रेडियो.

पुलिस ऑफ क्या बोल रहे सब लोग एमवे बनता है मालूम है ना मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे लेट्स डू इट ए

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
2: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
0: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है,
4: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
5: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
4: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करें।
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
6: सच में सब संभाल लेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
0: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
8: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
9: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
10: Thank you very much for joining us. Let's get started with our program on this lovely Friday morning. Ladies and gentlemen, it's the 14th of August, and we would love to wish everybody from Pakistan a very, very happy Independence Day today. We'll start our program with the national anthem of Pakistan this morning.

0: From the movie Delhi 6, Javed Ali and Kailash Kher's voices.
1: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
2: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
3: ये तारा वो तारा हर तारा।
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. और ईमेल एट info@seemamehtalawfirm.com।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: बेटा, 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
9: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
9: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: ओचो
13: होको
12: ओचो
13: होको
12: ओचो
13: इट्स होको।
9: अरे बस भी करो यार।
13: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
9: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है, एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
4: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
10: or sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
17: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

0: 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Hire moti, main na chahun.
8: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
9: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
10: Fikar not. We have the perfect solution.
11: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
12: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
13: Call the SBA Loan Experts.
12: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
13: Call the SBA Loan Experts.
12: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
13: Call the SBA Loan Experts.
12: Construction हो या renovation, business खरीदना हो या refinance कराना हो, for all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA Loan Experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
14: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
11: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
15: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
16: लिया.
15: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
16: नहीं आया.
15: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
17: Visit www.sanadainc.com today.
18: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
19: जिंदगी एक सफर है सुहाना.
0: यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
11: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, सुइट 205, फ्रिस्को।
16: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.
17: If you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show on this lovely Friday morning. It is the 14th of August today, and to everyone from Pakistan today, we would like to wish you a very, very happy Independence Day. And we're going to start this hour of the program with the national anthem of Pakistan.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Arey yaar, ghar mil gaya.
2: Ghar to dekh raha hoon. Lekin it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
0: Isliye call karo Ajay Prabhu of Beam Real Estate. Ajay is an experienced realtor. Wo sirf ghar nahi dikhate, har property ka honest review dete hain. Pros and cons samjhate hain. Best price negotiate karte hain. Builder incentives dilwate hain. Aur closing par cashback bhi.
2: Seriously? Achhe service bhi aur cashback bhi?
0: Bilkul. Visit ajayprabhu.com and see why so many people are raving about him.
3: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
0: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
5: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
6: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं.
5: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
6: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
5: इंडिया तक.
6: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
0: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
0: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.

माटी को माँ कहते हैं हम, भारत माँ का मनाने जा रहे हैं हम स्वतंत्रता दिवस. एंड दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज हैपनिंग टुमारो एट द कोमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. द 49th आनंद बाजार बीइंग ब्रॉट टू यू फॉर द 49th टाइम बाय द इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास, सेलिब्रेटिंग द 80th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया एट द कोमेरिका सेंटर एट द एवेन्यू ऑफ द स्टार्स इन फ्रिस्को. Tomorrow from 1 p.m. onwards. And the best part, it's completely indoors and it's completely free for everyone. Enjoy authentic Indian food, a grand parade, cultural performances, live music, shopping. You bring your family, bring your friends. And be a part of North Texas's biggest Indian Independence Day celebration. India Association's Anand Bazaar 2026 is tomorrow. Panasia Network, very proud to be a part of this huge celebration in our community. There will be a live concert and the concert is entirely free also. Shanmukha Priya and Ashish Kulkarni, the finalists of Indian Idol Season 12, have already landed in Dallas. Please remember, tomorrow you all are doing nothing else but being with all of us at the Comerica Center. Doors will open at 1 p.m.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: अजी सुनते हो?
2: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
3: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स। सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
4: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
6: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे। Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
7: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye. HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
3: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s। September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.
8: Hello listeners, my name is Umaira Jamani and I'm from Sinada Inc. Today I'm here to talk about homeowners coverages. Please do not wait until storm season. Weather-related claims remain one of the biggest causes of homeowners' losses. There are a few important reminders that you should consider. You should review your deductibles, verify replacement cost coverage, document valuables, update home inventories, understand flood exclusions. Many homeowners discover coverages gap only after filing a claim. A policy review today can help avoid surprises later. For that, you can contact me or my team at 972-863-7772, 972-863-7772, and we can review the policy and assist you. Thank you.

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%। सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 96641।
4: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
5: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
4: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
5: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
4: और एंटरटेनमेंट,
5: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
4: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
5: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
6: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
0: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
3: Ocho.
4: Hoko.
3: Ocho.
4: Hoko.
3: Ocho.
4: It's Hoko.
5: Arey, bas bhi karo yaar.
4: Arey, naya restaurant hai, but naam samajh hi nahi aa raha hai.
5: Naam Hoko ho ya Ocho, kya farak padta hai? Ek baar wahan ke legendary chana puri, iconic sandwiches, delicious curries, chaats aur famous cold cocoa taste karoge na, phir naam nahi, sirf taste yaad rahega.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में वही आइकॉनिक फ्लेवर्स वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस टेस्ट इंडिया रीलिव मेमोरीज
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सस टाइटल हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो हर कदम आपके साथ
0: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route. Rerouting.
0: अरे ये क्या मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
0: क्यों?
8: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं Daily groceries हो या Pooja essentials. Authentic Indian products और घर की हर जरूरत Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
0: अच्छा तो सीधा वही ले चलो
1: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
9: हाय दिस इज शर्वरी यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो

ऑल ऑफ दैट, लेकिन उसके पहले ना सेलिब्रेशंस के बारे में ही बात करना चाहती हूँ कि कोई वेडिंग सेलिब्रेशन, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या कोई स्पेशल सेलिब्रेशन हो आपका, तो आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री उपाय है वेनिसा इवेंट्स. और ये इसीलिए क्योंकि वेन्यूज का, डेकोर का, केटरिंग का, सारी डिटेल्स का ख्याल यही रख सकते हैं. तो वाई नॉट यार, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और हेडेक फ्री इवेंट, ताकि आप भी इंजॉय कर सको. यू नो इट ऑलवेज हैपन्स कि इवेंट के पहले हम इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते इन सब चीजों को लेकर कि जब फाइनली इवेंट का दिन आता है हम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है मेंटली एंड फिजिकली. सो ये सारी चीजें आप साइड में रखो और वेनिसा इवेंट्स के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि दे विल टेक केयर ऑफ द वेन्यू सिलेक्शन ऑफ कोर्स विथ योर इनपुट्स एंड वट एवर यू वॉन्ट, कीपिंग योर विजन इन माइंड. और फिर ब्यूटिफुल डेकोर के लिए सिग्नेचर इवेंट्स के साथ दे आर कनेक्टेड फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलिशियस केटरिंग दैट दे विल डू एक्सक्लूसिवली बाय द रिनाउंड बसेरा ग्रैंड दैट यू गेट. सो हरी बसेरा जी को जरूर कॉल करें. 4694428770 इज दैट नंबर. वेनिसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर्स. Rica stararina kukaru, rica ooh stara, rica stararina kukaru.

हमारी बातें ऐसी ही चलती रहेंगी. दिस इज फनीशा रेडियो 104.9 एफएम दैट यू हैव ट्यून्ड इनटू. तो पहले तो बता दूं, 14th ऑफ अगस्त आज की तारीख, घड़ी में ला लीजिए, इट इज 16 मिनट्स पास्ट 10 बाय द स्टूडियो क्लॉक. और यहाँ पे दो बड़े दिन के सेलिब्रेशंस की बात हो रही है. सेलिब्रेशंस की तरफ जाएं और उनके बारे में बात करें, कुछ आपकी आपके मेमोरीज के बारे में बात करें. बैक इन इंडिया, हाउ यू यूज्ड टू सेलिब्रेट.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Hello,
2: मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
1: Fikar not. We have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: Call the SPA Loan Experts.
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: Call the SPA Loan Experts.
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: Call the SPA Loan Experts.
4: Construction हो या renovation, business खरीदना हो या refinance कराना हो, for all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA Loan Experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
6: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
7: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
8: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
10: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
9: सच में सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
11: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? Omar Khwaja.
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
13: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
8: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
14: ट्रैक्स दैट पुट यू ऑन द राइट ट्रैक.

was a product of 1975. Aaj ke din release hui thi Mili, aur isiliye hamare is segment ka ye hissa hai. You are listening to Gapshap Gali with me too, and this segment is purely dedicated to the songs that released on this day from films that released that on this day, and it is 14th of August. Actually, मुझे this day नहीं बोलना चाहिए, 15th of August भी cover करने वाले हैं, क्योंकि कल मैं नहीं आऊँगी, कल Saturday है, इसीलिए नहीं आऊँगी, और इसलिए मैंने सोचा 14th and 15th दोनों cover करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे, especially when the movie was so wonderful, Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan, of course. In that one that we watch in 1975, what a year it was for Amitabh Bachchan, honestly. क्योंकि अगर आप देखो तो उस साल उनकी कितनी सारी फिल्म्स जो हैं सुपर हिट हुई थी, जिनमें से चुपके चुपके और दीवार भी नाम आता है टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स ऑफ दैट ईयर दैट यू कैन काउंट, इंक्लूडिंग द मूवी मिली, जिसका आपने ये गाना सुना, ब्यूटिफुल सॉन्ग, एंड वन ऑफ द लास्ट फिल्म्स ऑफ एस डी बर्मन दैट वी ऑल आर अवेयर ऑफ, अमेजिंग म्यूजिक फॉर द फिल्म दैट वी नो, राइट. और उसके अलावा बहुत सारी और फिल्म्स आई थी, जमीर, फरार, बहुत सारी और अच्छी फिल्म्स आई थी, लेकिन फिर भी 1975 का जो किलर फिल्म है, जो हम सबको पता है, इट इज शोले, लेडीज एंड जेंटलमैन. जी हाँ, आज ही के दिन नहीं, एक्चुअली 15th अगस्त के दिन रिलीज हुई थी ये फिल्म, और इस फिल्म के कैरेक्टर्स दे आर आइकॉनिक इन आर हेड्स, राइट. वो वीरू, वो जय, वो सारे जो कैरेक्टर्स थे, एंड दे ऑल आर एज यंग एज दे वर देन इन आर माइंड्स, है ना. October 2nd of 1973 was the first day of work for the entire Sholay team. और Sholay का पहला शॉट पता है आपको क्या था? वो एक सीन था जहाँ apologetic अमिताभ बच्चन जया बच्चन के कैरेक्टर को कुछ सेव की चाबी लौटाने के लिए जाते हैं, एंड देर आर ओनली जस्ट टू सीन्स इन द एंटायर फिल्म व्हेन अमिताभ बच्चन's कैरेक्टर जय स्पीक्स टू द कैरेक्टर राधा, जो कि जया बच्चन ने किया था, जो एक विडो का किरदार प्ले कर रही थी, एंड जी हाँ, पहला सीन वो था जहाँ पे सेव की चाबी वो वापस करने जाते हैं, विच वॉज द स्टार्ट ऑफ देयर लव स्टोरी इन द फिल्म. और बाकी उनकी निजी जिंदगी में, वेल, दे फेल इन लव, गॉट मैरिड, already had their first child, Shweta Bachchan, by then, and the second was on the way. Ji haan, Jaya Bachchan was pregnant with Abhishek Bachchan jab is film ki shooting chal rahi thi, and that's the prime reason ki Amitabh Bachchan ko location ko lekar zyada enthusiasm nahi tha actually, aur saath hi saath he felt ki Ramnagaram ka location bada yaar untested aur unconventional tha for a film like Sholay with a story revolving around dacoits, you know, kyunki uske pehle tak to aise banditry ki jitni bhi films wo bani thi wo Chambal region mein shoot ki jati thi, the ravines of Chambal, also known as Bihar, that was a special place in North Central India's folklore, जहाँ banditry की बात आती है, right? It's just that कि Ramesh Sippy एक different side of shooting location चाहते थे इस film के लिए, to make a mark of his own, and of course the influence of the cinema of the West, those big boulders and stuff like that which had impressed him, उन्हें कुछ वैसा ही चाहिए था अपने इस film के लिए, और उन्होंने चुना बैंगलोर के पास इस जगह को, रामनगरम को. Sholay रिलीज ऑन 15th of August 1975 विथ आइकॉनिक म्यूजिक बाय आर डी बर्मन साहब.

0: हर तारा। अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
0: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लिक। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
3: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
4: लैपटॉप में।
3: इन्वेस्टमेंट?
4: गूगल ड्राइव।
3: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
4: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
3: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
0: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम।
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल।
0: कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799, और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। NRI वेल्थ, डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान।
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
0: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
12: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
14: Tracks that put you on the right track.

अगस्त 15 को रिलीज हुई थी ये फिल्म, इसीलिए तो मैंने ये गाना लगाया आप लोगों के लिए वेरी स्पेशली. एक था टाइगर 2012, अगस्त 15 वाज द रिलीज डेट, ए ब्लॉकबस्टर दैट वी नो. और ये एक ऐसी फिल्म जो कबीर खान ने डायरेक्ट की थी दैट वी ऑल आर अवेयर ऑफ. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. पिछले सेगमेंट को थोड़ा सा और कंटिन्यू करना चाहती हूँ बिकॉज सच ब्यूटिफुल सॉन्ग्स फ्रॉम फिल्म्स दैट रिलीज ऑन दिस डे एंड टुमारो इज वेल. 14th और 15th ऑगस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा रिलीज का विंडो रहता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो पाकिस्तान. लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड वंस अगेन विशिंग ऑल माई लिसनर्स फ्रॉम पाकिस्तान जश्न आज़ादी दिल से मुबारक हो आप सभी को. आई होप आप लोग अपना ये दिन बहुत स्पेशल तरीके से मना रहे हैं. कुछ मनाने की ही बातें हम यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी मैं यहाँ पर, कि अगर कोई भी मेमोरी है ना आपके जो बचपन से एसोसिएटेड है, आई स्टिल रिमेंबर द वे वी यूज टू cling to the TVs to watch all those patriotic songs and all the movies that used to come during this time and that, and also back in school जब हम वो झंडे बनाया करते थे और हमारे जो है एक ना पूरा थीम चलता था हमारे स्कूल में ना, एक उस दिन खास थीम चलता था कि कोई जो है सब मिलके प्रेजेंट करेंगे, कुछ गाना गाएंगे, पेट्रियोटिक गाने गाएंगे, कुछ थॉट्स प्रेजेंट करेंगे बच्चे, एंड दैट यूज टू बी इज वेरी स्पेशल सेलिब्रेशन. एंड ऑफकोर्स कल्चरल इवेंट्स दैट वर मेड श्योर दैट चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन एंड ऑल ऑफ दैट. तो मुझे आप अपने बचपन की यादें बताओ, आपके इंडिपेंडेंस डे की यादें क्या हैं. आप पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, इट डजंट मैटर. आप अपना सेलिब्रेशन कैसे करते हो, दैट इज़ वॉट मैटर्स. एंड वही मैं जानना चाहती हूँ कि बचपन या समझ ले अपने कंट्री से यहाँ पर आने के बाद जो चेंज हुआ और उस चेंज में अपने आप को किस तरह से आपने इवॉल्व किया टू सेलिब्रेट इन अ न्यू वे, ये ज़रूर बताइएगा. एंड ऑन दैट नोट वंस अगेन IANT की तरफ से जो सेलिब्रेशन कल है, कुमेरिका सेंटर, इट इज़ ऑल एयर कंडीशन बिकॉज इट इज़ एन इंडोर you know, set that they have made sure that it is available for all of you. And when I say set, it is set for all of you to have a great day. तो ज़रूर इसका हिस्सा बने आप. और 2 PM onwards it's going to start. और बहुत सारे इवेंट्स और सेलिब्रेशंस के तौर पे कल्चरल इवेंट्स, परेड एंड म्यूजिक, एंड आशीष कुलकर्णी एंड षणमुख प्रिया परफॉर्मिंग देयर, यार दैट इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक. खाने पीने के अलग अलग बूथ्स होंगे, बहुत सारी तैयारियां हैं. सो यस, गेट रेडी फॉर दैट लेडीज एंड जेंटलमैन एज वेल. एक ये फिल्म जिसके बारे में मैं बात कर रही थी ना कि एक था टाइगर, अगस्त 15, 2012 को रिलीज हुई थी, तो 2 साल आगे चलते हैं और 2014 पे लेकर जाती हूँ. दिस अनदर सुपरहिट फिल्म दैट वॉज ऑल्सो ए फ्रेंचाइज, राइट. सिंघम रिटर्न्स की बात करने वाली हूँ यहाँ पर. बात क्या करने वाली हूँ, गाना सुनवाने वाली हूँ सीधे.

जी हाँ, आज ही के दिन नहीं, 15th अगस्त को रिलीज हुई थी सिंघम रिटर्न्स, एंड दैट इज वाई दिस अजय देवगन सॉन्ग दैट यू जस्ट हर्ड. इट वॉज द ईयर 2024, जस्ट FYI. 14th अगस्त और 15th अगस्त की बहुत अहमियत है हमारी जिंदगियों में, है ना. उसी के बारे में कुछ बातचीत मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ. यू हैव टू गेट एक्टिव ऑन दिस वन ईयर. कम ऑन, 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दैट, आई डू वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं आपके साथ शेयर करूं ओमर ख्वाजा का नंबर, अटर्नी ओमर ख्वाजा का नंबर, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारी जिंदगियों में इनका नंबर जो है हमारे फ़ोन पे ना सेव रहे, कि कभी ऐसी कोई बात हो जहां पर कि आपको चोट लगी हो, स्लिप एंड फॉल का कोई केस हो, वर्क प्लेस केस हो, या फिर कार एक्सीडेंट में आप पड़े हों और आपको लगता है कि यू डिज़र्व ए कॉम्पनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी, आप ज़रूर इनके साथ कनेक्ट करें. अटर्नी ओमर ख्वाजा का नंबर है 4693005046.

And you can visit attorneyomar.com for more information. You don't pay until you win. That is their biggest confidence that they give you, ki ye aapko aapka compensation dilwayenge zarur. And that is the one thing they emphasize on. You don't have to pay until you win. For a free consultation, once again, that number is 469-300-4... 469-300-5046. Zarur yaad rahe aapko. Alright? You are listening to Gapshap Gali with Meetu. Aur aaj 14th August hai, jahan Pakistan apna Independence Day mana raha hai. Aur kal 15th August hai, India apni azadi ka jashn manayega. No matter which side of the border we grew up on, our childhood memories of this week are exactly the same. सच्ची याद है वो बचपन में जो हम किया करते थे ना, सुबह सवेरे एकदम परफेक्टली आयरन क्लोज जो हम अपने यूनिफॉर्म को अच्छे से आयन करके, इट यूज़ टू बी यूजुअली वाइट इन आर केस, और हम जाते थे एक छोटा सा पेपर फ्लैग यू नो अपने पिनअप भी कर लिया करते थे कभी कभी शर्ट पे या हाथ पे लेकर, जो हमने बनाया होता था वो हम हाथ में लेकर जाते थे. एंड देयर यूज़ टू बी दिस बिग इवेंट ऑन द प्ले ग्राउंड वी दैट वी हैड, दिस इवेंट ग्राउंड दैट वी हैड इन आर स्कूल. और वहाँ पे सारी तैयारियाँ तो कई दिनों से चल रही होती थी ना, तो जो वो यू नो एक जो शोकेस करते थे अलग अलग, वो जो हम फ्लैग के कलर्स को लेकर हम जो परफॉर्म करते थे वहाँ पर, वो धूप कितनी भी निकली हो वो सारा कुछ इग्नोर करके, वी यूज टू वेट फॉर द चीफ गेस्ट टू कम, जो फ्लैग होइस्टिंग होगी, फिर नेशनल एंथम गाया जाएगा, ऑन द टॉप ऑफ आवर लंग्स वी वुड सिंग. That kind of vibe and that kind of energy that used to happen, right? वो सारी यादें ही तो ताज़ा करना चाहती हूँ. तो सच बताएं, असली motivation तो seriously वो जो सारे जो हम चीज़ें करते थे at school, and also you know those patriotic songs जो गली गली में हमें सुनने को मिलता था उस दिन खास कर, और उसके कुछ दिन पहले से जो एक वो समा बन जाता था. seriously, all of that you guys need to come on air and share with me. 972-235-5555. Once again, this is Gapshap Gali with Meetu.

बचपन के कुछ दिन याद कर रही थी आप लोगों के साथ। इंडिपेंडेंस डे पे हम क्या किया करते थे, बॉर्डर के इस पार हो या उस पार, पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, वो सेलिब्रेशंस कुछ एक ही रंग के होते थे, एक ही तरह के होते थे। डोंट यू एग्री कि वो बचपन की बातें करते करते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला, और कब कब यूएस आए ये तो अच्छी तरह से पता है, लेकिन यूएस आके भी अपने आप को यहाँ के रंगों से ढाल लिया। 250th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन दैट अमेरिका इज सेलिब्रेटिंग, उसके साथ हम अपना जश्न भी मना रहे हैं, टोटली बीइंग पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड रिटेनिंग दोज ब्यूटिफुल थिंग्स दैट वी हैव पिक्ड अप फ्रॉम आवर मदरलैंड एज वेल, राइट? और वी माइट बी थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम आर होमलैंड, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, द ट्रू देसी स्पिरिट नेवर फेड्स। ये मानते हैं कि नहीं आप? आज यहाँ डैलस में हम वही रौनक लाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, हम अपने बेस्ट जो एथनिक कपड़े हैं वो पहन के जाते हैं हम अपने सेलिब्रेशन में। कोई कोई आज के दिन ब्यूटिफुल ग्रीन और वाइट कपड़े जो वो पहनेंगे, तो कोई वो गेरुआ सफ़ेद और हरा रंग जो कल पहनेंगे। इंस्टेड ऑफ द स्कूल ग्राउंड्स वी नाउ गैदर एट मैसिव कम्युनिटी इवेंट्स, ड्राइविंग विथ दैट सेम सेम एंथुजियाज्म थ्रू द इवेंट, और वो जो पेट्रियाटिक गाने हमें वहाँ पे सुनने को मिलते हैं, कुछ कुछ अलग ही मंजर यहाँ पे भी जो हमने अपने लिए बना लिया है। और सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, हम अपने आने वाली जेनरेशन को वही एहसास, वही खुशबू और मिट्टी की पहचान से हम जोड़े रखना चाहते हैं। एंड हियर्स विशिंग ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल आर पाकिस्तानी लिसनर्स टुडे, एंड इक्वली हैप्पी इंडिपेंडेंस Day to our Indian listeners tomorrow. Well, keep flying those colors high and keep listening to Gapshap Gali with me too. This is Fanisha Radio 104.9 FM. Hopefully, na azadi hamare sirf jo hamare books mein likhi hui hai usse bahar aakar hamare vicharon ki azadiyon par bhi थोड़ा सा हम ध्यान दें।

0: यार मॉडर्न मंगल सूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्र।
0: सीरियसली कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगल सूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्रस। कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
4: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
5: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
0: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
2: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
6: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
7: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
9: Wait, itna sab aur price?
10: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
11: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
12: उमर ख्वाजा।
13: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
14: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
15: Tracks that put you on the right track.

जिस जुनून के साथ आप लोग अपनी बातें शेयर करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू नेहा, थैंक यू. आई थिंक सोनाली दैट वाज, एंड देयर वाज अनदर लिसनर जिनका नाम पूछना भूल गई. जोश जोश में होश खो बैठी, यानी कि मैं पूछना भूल गई कि क्या मैं किन से बात कर रही हूँ, बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू आस्क द अदर पर्सनस नेम. हालांकि ऐसा नहीं कि हम मिलने वाले हैं या ऐसा कुछ, आई मीन मिल भी लें तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों से, लेकिन ऐसा है कि हम आवाज़ की दुनिया के दोस्त हैं, तो किन दोस्त से बात कर रही हूँ वो तो पता चलना चाहिए, राइट? इसीलिए कहना चाहती हूँ कि येस टू एवरीबडी हु गिव मी दैट कॉल टू कनेक्ट विथ मी टू टेल देयर स्टोरीज. अभी हम इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे थे, कितनी सारी कहानियाँ सुनने को मिली और कितना अच्छा लगा. ऑनेस्टली आई कॉन्ट टेल यू दैट. मैं यहाँ से जब जाती हूँ ना, बिल्कुल खुश होके जाती हूँ. होपफुली आपको भी यही एहसास होता है जब हम हमारे शोज सुनते हो ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. वेल, दिस पार्ट ऑफ माई शो इज ब्रॉट टू यू बाई AG फिनटैक्स, एंड वी आर proud to tell you that they are one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. So basically saying ki agar aapka startup hai ya aapka established business hai, jo bhi hai, in any which case AG Fintechs aapki puri madad kar sakte hain. Innovative financial solutions hai inke paas aapke liye khas tailor made jo hai wo solutions nikalenge, chahe wo bookkeeping se related ho, payroll accounting, bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory services. Anything that you need finances ko organize karne ke liye aur bilkul future ready rehne ke liye, inke saath zarur jude. And jab main ye sare number deti hu, hame pata hai ki hum bahut sari achhi achhi baatein karte hain, aur hum achhi baatein isiliye karte hain kyunki hum in pe vishwas karte hain. To aap hamare vishwas pe vishwas karke dekhiye and see if they are for you. Jab bhi hum koi aisi baatein karte hain na aapse, we want you to get in touch with them, kyunki mujhe aisa lagta hai ki baat karne se bahut sari cheeze na samajh mein aati hain. You get that vibe. आपको समझ में आता है कि इनके साथ आप सर्विस लेना चाहोगे कि नहीं. ऑल दोज थिंग्स यू कम टू नो व्हेन यू मेक दैट कनेक्शन फर्स्ट हैंड, है ना. 4699429888 इज दैट नंबर. agfintechs.com इज द वेबसाइट दैट यू मस्ट लॉग ऑन टू. ऑल राइट, इफ यू आर लॉग्ड इन ब्यूटिफुली विथ मी, अगर आप बिल्कुल इन सिंक है मेरे साथ, तो ये अगला गाना सुनिए और मुझे फीमेल वॉइस का नाम बताइए. दो लिसनर्स को मैं देने वाली हूँ सैन इडली की तरफ से ये गिव अवे, और ये गिव अवे बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि आपके अपने पसंद का डोसा दैट यू कैन चूज देयर अलॉन्ग विद द बेस्ट फिल्टर कॉफी दैट यू कैन गेट. सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको जैन ऑप्शंस भी मिल जाएंगे केटरिंग के लिए भी और वहाँ खाने के लिए भी. तो सैन इडली जो कि है हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन पे, यहाँ से दो लोगों के लिए गिव अवेज है मेरे लिए यार, मेरे पास. एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू, कॉल मी एट 972-235-5555. इस गाने की जो फीमेल आवाज़ है वो पहचानिए.

लिसन, आई एम स्टिल वेटिंग ऑन द राइट आंसर हियर. मुझे अभी भी सही जवाब मिला नहीं है आप लोगों से कि इस गाने में फीमेल सिंगर कौन है. आप बताओगे तो ही तो हमारी गाड़ी आगे चलेगी ना. सैन इडली की तरफ से आप में से दो लोगों के लिए प्राइज है फ्रॉम देम, डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी. इफ यू टेल मी हु वॉज द फीमेल वॉइस इन दैट सॉन्ग, लेडीज एंड जेंटलमैन, 972-235-5555 हमारे स्टूडियो का नंबर है. जब तक वो जवाब नहीं मिलता मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ यार. ये मेरी ना जिद है आप लोगों के साथ कि हाउ कम आई डिडंट गेट एनी कॉल ऑन दिस वन. ऑलराइट, लेट मी टेक दिस नेक्स्ट कॉलर एंड लेट्स फाइंड आउट अगर उनको जवाब पता है. आप ये एक और गाना सुनो एंड द फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग दैट शी संग. तो अगर अब भी आवाज़ नहीं पहचाने ना तो फिर क्लास लगने वाली है आप लोगों की. At the age of 12, she sang this song. The 1996 film Shastr is the name of the film. You have to tell me the name of the female singer here.

एंड वो बच्ची वाली आवाज ना आदित्य नारायण की थी, एंड हिज डैड उदित नारायण वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग. शस्त्र है फिल्म का नाम, और शस्त्र जो रिलीज हुई थी, लेट्स सी, 1996, तो एग्जैक्टली 30 ईयर्स बैक, राइट? और 12 साल की थी सुन्नी थी चौहान, लेडीज एंड जेंटलमैन. और इसी नाम के पीछे मैं थी कि यार बताओगी तो ही तो मेरी गाड़ी आगे चलेगी, तो ही तो हम विश कर पाएंगे उनको हैप्पी वाला बर्थडे. नाउ शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड वेन शी सैंग दैट सॉन्ग फ्रॉम शास्त्र, एंड दैट वॉज हर फर्स्ट इन द बॉलीवुड. तो लगा लीजिए, डू द मैथ एंड यू विल फिगर आउट हाउ ओल्ड शी इज. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू. एक और गाना मैं प्ले करना चाहती हूँ, क्योंकि सुनिधि चौहान का आप जानते हो असली नाम क्या था? निधि चौहान, जी हाँ. तो ये जो सू, जो कि सुर या संगम से लिया कल्याण जी, आनंद जी के कल्याण जी ने, और उन्होंने ये नाम रखा उनके लिए, एंड दैट इज सुनिधि चौहान सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे. एंड द काइंड ऑफ एवोल्यूशन वी हैव सीन इन हर, राइट फ्रॉम दैट 12 ईयर्स ओल्ड टू वॉट शी इज टूडे, अमेजिंग सिंगर दैट शी इज. मतलब वर्सटाइल जो है वो, हम तो जानते हैं उनके बारे में क्या ही कहा जाए, बस इतना ही कि यार ऐसे ही गाती रहें, ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने हमें देती रहें. और मैं उस गाने पर लेकर जाने वाली हूँ सुनिधि चौहान की, जो कि सोनू निगम के रेकमेंडेशन पे सुनिधि चौहान को मिला था. संदीप चौटा इज़ द म्यूजिक डायरेक्टर, एंड इट वॉज सोनू निगम हु रेकमेंडेड सुनिधि's नेम फॉर दिस वन, एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री. सुनिधि चौहान के इस जवाब के लिए दो लोगों ने जीता है, एक है प्रतीक साहब और एक है बिंदिया. कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू फॉर विनिंग फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट, योर चॉइस ऑफ डोसा प्लस वन फिल्टर कॉफी.

Me, she keeps sparkling, and that's Sunidhi Chauhan wishing her a very happy birthday. And sparkle से मुझे याद आया यार कि diamonds की sparkle भी कुछ ऐसी है कि जिंदगी भर रहती है और जो occasion पे आप लेते हो ना उससे और चमक जाती है. और ये occasion जो Tanishq आपको दे रहा है उससे तो चमचमाने वाली है एकदम. Tanishq Festival of Diamonds, ladies and gentlemen, you can enjoy up to 25% off on diamond value and making charges, plus 0% deduction on the exchange of old gold above 18 carat. So celebrate kijiye the season with timeless sparkle at Tanishq. And Tanishq mein jo hai jaakar aapko terms and conditions bhi pata chal jayenge. Tanishq in Frisco, ladies and gentlemen, do remember. Sunidhi Chauhan, ladies and gentlemen, जिनको क्लासिकल ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं उन्होंने ली हुई है, लेकिन देखिए मतलब क्या हुनर है. श्रेया घोषाल एंड सुनिधि चौहान, जो एक टाइम पे राइवल माने जाते थे, ये लोगों की समझ थी, लेकिन असल में देखिए इतनी अच्छी फ्रेंडशिप. दे सैंग दिस वन टुगेदर जस्ट वेरी रिसेंटली, अ ईयर बैक. वी नो दैट, राइट?

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte ek door se shuru hote hain aur ek anmol nishani ke saath hamesha ke liye amar ho jate hain. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
7: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
8: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
10: Samasya ka pakka samadhan.
9: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route. Rerouting.
8: Arre, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
11: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
8: Kyun?
11: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials. Authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
8: Achha. तो सीधा वही ले चलो
12: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
11: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
13: एक और लड्डू ले लो
14: थोड़ी और बिरयानी
13: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा
15: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं वेट कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए
12: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अलोंग विद ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट फाइब्रो स्कैन विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259 पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर
16: भूख लगी
17: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है
18: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग
8: अ क्विक बाइट अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर यू गो टू Page 3 हब 121 मैकिनी
19: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस पोकर हो या ब्लैक जैक एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चॉकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
14: tracks that put you on the right track.

And that was a brother sister song. जी हाँ, ऐश्वर्या राय और साथ में शाहरुख खान, जो दुनिया ने नहीं सोचा था कि ऐसे ब्रदर सिस्टर बन के आएंगे. तो जितना तो लोगों को इंतजार था इस फिल्म का ये देखने के लिए कि ये शाहरुख खान ने अपने आप गाया है ये गाना, वो सुनने के लिए, साथ में ये देखने के लिए दैट ब्रदर सिस्टर कैमराडरी कैसी रही और बहुत कमाल की रही. फ्रॉम द फिल्म जोश, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ इज द जोश? आई वॉन्ट टू आस्क यू, क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर की ये जो बात छेड़ी है वो ऐसे ही नहीं छेड़ी है मैंने. इट देर इज़ अ बिग रीज़न बिहाइंड इट एंड इट इज़ द चॉक्ड आउट रीज़न दैट यू कैन डिड्यूस प्रॉबेबली. क्योंकि हम आपके आपसे पूछते हैं भाई बहनों के कुछ किस्से, सिबलिंग किस्से जो हम आपके जानना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग जो कि आप एक मिनट के अंदर अंदर शेयर करके हमें बता सकते हो, वो बताओ यार. वी वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम यू. Send us that 1 minute voice note on WhatsApp at 2148377146 and guess what? Aap jeet sakte ho kuch exciting daily prizes including dining experiences, entertainment, resort stays, and this is very specially from Choctaw Casino and Resort and Funasia. Ye khas celebration Raksha Bandhan ka jo is bari hum lekar aaye hain aapke liye along with Choctaw Casino and Resort, I'm sure you're going to enjoy. पता है ग्रैंड प्राइज है द सिबलिंग री यूनियन वीकेंड दैट यू कैन हैव एट चॉकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरांट इफ यू आर द विनर. यस, तो जरूर याद रखें कि ऐसे वॉइस नोट आपको भेजनी है और क्या पता कि आप जीत जाओ और चॉकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट पहुंच जाओ. याद रखें कि यू हैव टू बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो अप्लाई होती हैं और ये तो कहने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी वी आर ऑल एडल्ट, वी मस्ट प्ले रिस्पॉन्सिबली. दैट इज ऑल्सो द थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर. और अभी आपको मौका मिलता है कि आप अपनी सिबलिंग कुछ कहानी हमारे साथ शेयर करो और जीतो, जीतने के पॉसिबिलिटीज बढ़ाओ, बिकॉज यू विल गेट डायरेक्ट एंट्री इन टू दिस कॉन्टेस्ट अगर आप अपना कुछ किसी का कहानी अगर शेयर करते हो. मैं भी करूंगी इस गाने के बाद. अनादर ब्रदर सिस्टर सॉन्ग, प्रियंका चोपड़ा एंड फरहान अख्तर प्लेड ब्रदर सिस्टर इन दिस वन. रिमेंबर ना, दिल धड़कने दो.

जी हाँ, दिल धड़कने दो विद फनीशा रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। और राइट, यहाँ पे ना आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ, और वो चीज है खाने वाली चीज। पेज 3 ईटरी की तरफ से जो मजेदार खाना है ना, इसके बारे में जब भी जिक्र करती हूँ मुझे वो सारी चीजें याद आ जाती है जो मैं वहाँ की बड़ी पसंद करती हूँ। वेल, यू हैव टू गो टू दैट प्लेस टू एक्चुअली एंजॉय द फूड एंड द एम्बियंस एज वेल। या बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कोई अच्छा एक एम्बियंस कोई जगह पे जाते हैं नाम, तो खाने का मजा दुगना हो जाता है। और खाना अगर इतना स्वाद हो तो तिगुना चौगुना कहना चाहिए मुझे। एक्चुअली बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर, दैट्स व्हाट पेज 3 ईटरी इज फॉर यू। पेज 3 ईटरी.com इज द वेबसाइट एंड इट इज एट हब 121। अब क्योंकि खाने पीने की बात चल रही है तो मैंने सोचा ये जो सिबलिंग प्यार है ना, जो उमड़ उमड़ के गिरता है जब आपके हाथ में एक कोई पसंदीदा स्नैक है आपका, और आपकी बहन या आपका भाई आपसे पूछता है कि यार एक बाइट देना देना यार एक बाइट, वो अपना ख़त्म कर लेते हैं पहले और उसके बाद जो वो मांगते हैं ना, ओहो मेरी बहन ने मुझे बड़ा परेशान किया इस चीज़ को लेकर। शी वुड ईट हर थिंग वेरी क्विकली एंड देन देना मीठू यार एक बाइट दे देना। एंड मैं भी कोई कम थोड़ी ना थी उस मामले में। द थिंग वुड बी कि मम्मी की तरफ से जब वो आंखें घूर के मम्मी देखती थी ना कि यार दो अपनी बहन को, ऐसा क्या कर रही हो, ऐसी क्या चीज़ है जो दोबारा नहीं मिलने वाली है तुम्हें, इस तरह का जब लेक्चर पढ़ता था तो वो जो टाइनी माइक्रोस्कोपिक बाइट जो उसमें से निकाल के हम उसको देते थे एंड दैट काइंड ऑफ अ थिंग। या तो फिर अगर एक बाइट देने की हम आगे बढ़ा देते थे स्नैक, यार छोटा सा ही बाइट लेना नॉट बिग, एंड देन यू विल फाइंड दैट योर सिबलिंग वुड टेक द बिगेस्ट बाइट ह्यूमनली पॉसिबल। मतलब क्या कहा जाए, प्योर बिट्रेली तो कहा जाएगा इसको। नो बट सीरियसली, दीज फूड स्टोरीज गो ए लॉन्ग वे, है ना। तो आप ज़रूर मुझे बताओ कि ऐसी कोई सिबलिंग कहानी अगर है जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर आप लोगों में ऐसा चलता था, या फिर यू नो आई इवन हैव द स्टोरी जहाँ पे मुझे याद है कि कढ़ी जब बनती थी हमारे घर में, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ कढ़ी, मी एंड माई सिस्टर वी बोथ आर वेरी फॉन्ड ऑफ कढ़ी। तो जब मम्मी गर्मा गर्म कढ़ी बनाती थी तो वी बोथ वुड टेक अ बोल, और उसमें से तभी खाने के पहले ही हम एक बोल लेके बैठ जाते थे। तो एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था कि हम बैठे हैं खाने के, मतलब बोल में कड़ी लेके हम दोनों अपने कमरे में जाके बैठ गए। घर में कुछ काम चल रहा था, कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था, आई रिमेम्बर। सो इट वाज ऑल मेस अराउंड एंड वी वर वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड ऑलरेडी एंड वी वर सिटिंग देयर एंड वी रियलाइज कि कड़ी में नमक नहीं है। अब उठे कौन, ना वो उठे ना मैं उठी। बिना नमक के हमने कड़ी खाई। सीरियसली, दैट्स व्हाट वी हैव डन। सिबलिंग स्टोरी या शेयर 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो।

0: खाने पीने के इर्द गिर्द ना हमारी बड़ी सारी सिबलिंग स्टोरीज है, उनमें से एक शेयर करने वाली है प्रियंका। यू आर लाइव ऑन एयर प्रियंका, और आपके इस कॉन्ट्रीब्यूशन से यू आर गोइंग टू गो स्ट्रेट इन टू द कॉन्टेस्ट। तो बताइए, एक मिनट के अंदर अंदर अपनी कहानी बताइए।
1: Okay, so my name is Priyanka. My brother's name is Dave. And you know, because I was the youngest in the house, girl child, pampered, jo mango mil jata hai, usse itne aasani se nahi milta tha. So he wanted to drink Coke. और उसने एक दो बार मांगा, उसको बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए, नहीं मिला। तो मुझे कहता है, तुझे पता है, एंड ही वाज एथलेटिक, तो ही वाज टॉल। सो ही इज टेलिंग मी, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया कि कोक पीने से हाइट बढ़ती है। तो मैं मंगाती गई, पीते गए, हम पीते गए, मेरी हाइट नहीं रह गई, वो लंबा होते गया, और अब मैं अब तक पी रही हूँ, यू नो। एंड उसने छोड़ दिया, यू नो, ही इज ऑल फिट एंड फाइन, और मैं पी के अपना मोटापा बढ़ा रही हूँ।
0: आई नो।
1: मुझे कब पता चला, After few months, years, you know, I kept doing that. और मुझे कहते हैं, तुझे पता है नया आर्टिकल आया है, रिसर्च हुआ है ऐसे कि शुगर के जूस से हाइट बढ़ती है।
0: अरे
1: मैंने
0: सही।
1: कहा, अच्छा, कोक से तो नहीं बढ़ी। तो कहते, तुझे समझ में नहीं आया, मैं बेस्ट बना रहा था।
0: How funny that is. इतनी मजेदार कहानी है यार, सीरियसली प्रियंका, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड यू गेट दिस ऑटोमेटिक एंट्री इनटू आवर चौकटाओ कैसीनो रिसोर्ट एंड कैसीनो दैट इट इज। एंड यहाँ पर आपको जो ये जो कॉन्टेस्ट चल रहा है गिव अवेज का, ये आप डायरेक्ट एंट्री आपको मिल जाती है फॉर शेयरिंग इट ऑन एयर। थैंक यू प्रियंका। और आपके ब्रदर का नाम क्या है?
1: देव।
0: देव मतलब दिमाग तो है देव का, ये तो मानना ही पड़ेगा यार प्रियंका। थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी, रियली अप्रिशिएट। होल्ड द लाइन एंड आई विल टेक योर डिटेल्स ऑफ एयर। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, सिबलिंग प्यार।

अच्छा, जाने से पहले ना मैं एक और खाने से रिलेटेड सिबलिंग स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. एंड कंग्रेचुलेशंस प्रियंका, वंस अगेन कॉन्टेस्ट में डायरेक्ट एंट्री मिलना ना इतना आसान नहीं होता. वैसे आसान है, सीरियसली. फॉर एवरीबडी हु वांट टू शेयर दिस स्टोरी, व्हाट्सएप टू दिस नंबर योर 1 मिनट स्टोरी एंड यू कैन गेट इन टू द कॉन्टेस्ट एज वेल. और वो व्हाट्सएप नंबर है 214-837-7147. वंस अगेन, हाँ, 214-837-7147. ठीक है, चौकटाओ रक्षाबंधन, ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है रक्षाबंधन का, फनीशर रेडियो एंड चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरांट, दे आर ब्रिंगिंग इट फॉर यू. ऑलराइट, जाते जाते कुमार शानू का जो अनफॉरगेटेबल 90s का जो कॉन्सर्ट है, वो जो सारे गाने आने वाले हैं ना, बहुत मजा आने वाला है. सीरियसली, लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल, फ्री पार्किंग है, एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस भी है. तो मतलब कुल मिला के ये कहते हैं, इसी के लिए कहावत बनी है, सोने पे सुहागा. तो यस, गो ऑन to eventbrite.com and buy your tickets right away. It is on September 11th at the brand new Robinson Fine Arts in Plano. Aur yaad rakhega, it is presented by Focus Entertainment and Fortune Group. Yani ki inke liye ek big shout out banta hai for bringing Kumar Sanu and his show Unforgettable 90s.

12:40 by the studio clock, and you're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. पॉपकॉर्न अगर ना हो तो इमेजिन कर लीजिए, और अगर ऑफिस या घर के काम से परेशान है तो दो मिनट जरा उनसे नजर हटा लीजिए, क्योंकि लाइट्स कैमरा एंड इट्स अ फिल्मी फ्राइडे. नमस्कार DFW, मैं हूं रमिता एंड दिस इज द फिल्मी फ्राइडे यू हैव ऑलवेज बीन वेटिंग फॉर, ओनली एंड वन एंड ओनली ऑन फनीशिया रेडियो. हर फ्राइडे हम सिर्फ गाले नहीं सुनते, हम बॉलीवुड को जीते हैं, कभी किसी आइकॉनिक डायलॉग के साथ, कभी किसी एवरग्रीन गाने के साथ, और कभी किसी नए ट्रेलर के और उस फिल्म के रिलीज के एक्साइटमेंट के साथ, और कभी उन यादों के साथ भी जो हिंदी फिल्म्स ने, मूवीज ने हमें गिफ्ट की है. तो चलिए, अगले दो घंटे ये शो बनने वाला है कंप्लीट बॉलीवुड मैगजीन. बात होगी इस हफ्ते के रिलीजेस की, OTT एंड थिएटर बोथ, और अपने कॉल्स, मतलब आप लोगों के कॉल्स के अलावा तो ये शो बिल्कुल अधूरा ही रह जाएगा. तो कॉल कीजिए, स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. शो शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से, जो मैं हर हफ्ते करती हूँ. मुझे जानना है कि अगर आपकी लाइफ फिल्मी होती, यानी कि कोई फिल्म होता, तो उस फिल्म का, मतलब आपके लाइफ का नाम क्या होता. इस एंटरटेनिंग एडिशन को जारी रखते हैं, सुनते हैं फिल्मी फ्राइडे विद मी रमिता, ओनली ऑन 104.9 FM फनीशिया रेडियो.

You are listening to 104.9 FM Funisha Radio, and this beautiful track was from the series which released last year on a very popular OTT channel, The Bads of Bollywood. Aryan Khan ka ye directorial debut aur ye gaane aur ye story, I mean, mashallah, kya hi bataye. Story to matlab end mein jo twist mila hum audience ko, jinhone dekhi hai unko pata hai ke क्या ही था. और जिन्होंने नहीं देखी है, अगर अभी भी आप इफ यू स्टिल हैव नॉट टेकन द चस्का ऑफ दिस मूवी और द सीरीज आई मस्ट से, देन गो अहेड एंड वॉच दिस. चलिए, ये तो भाई और बहन की अलग सी स्टोरी थी, लव स्टोरी या क्या ही करे, बट अगर भाई और बहन की एक्चुअल में बचपन की जो कहानियां मेमोरीज है जो अनफॉरगेटेबल है, यू नो, पूरे नॉस्टैल्जिया भरी आपकी जो बचपन है आपके सिबलिंग के साथ, उसे सेलिब्रेट करने का मौका दे दिया है हमें चौकटाओ कैसीनो एंड रिसोर्ट विच इज लोकेटेड इन ड्यूरेंट. चौकटाओ करेगा बंधन पूरा विद देयर रक्षा बंधन स्टोरी, यानी कि आपको सिर्फ एक मिनट वॉइस नोट भेजना है, व्हाट्सएप करना है हमें 2148377147. द नंबर इज 2148377147. घबराइए नहीं, सारे डिटेल्स हमारे सोशल मीडिया पेजेस में भी मौजूद है. नंबर मिस कर दिया तो वहां जाके ढूंढ लो एंड सेंड अस योर सिबलिंग स्टोरी इन अ मिनट एंड यू कैन विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिसोर्ट स्टेज और ग्रैंड प्राइज. पता है क्या है, यू कैन एक्चुअली स्पेंड अ वीकेंड एट द चौकटाओ कैसीनो एंड रिसोर्ट इन ड्यूरेंट, बट यू मस्ट बी 21 ईयर और ओल्डर टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट. देर आर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, यार हर कैंपेन में होता है, इसमें भी है, बट ऑल यू नीड टू डू, शेयर करो अपने मेमोरेबल स्टोरीज और करो अपना बंधन पूरा विद चौकटाओ कैसीनो एंड रिसोर्ट.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
5: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
11: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
10: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
11: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
10: इंडिया तक।
11: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
4: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
0: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
4: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
13: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio, and this is a Filmy Friday with me, Rimita. Aur main R ko roll nahi kar sakti, itna hi kafi hai. You know, Friday ka naam sunte hi do log sabse zyada khush ho jate. Ek to school ke bachche, kyunki is week is the back to school week, bahut khush ho gaye ke chalo finally aaj school se laut ke do din chutti manayenge, ghar pe papa mummy ke sath wapas se summer ki yaadein taaza karenge. और दूसरे कैटेगरी के हैं बॉलीवुड लवर्स, क्योंकि यार फ्राइडे होता है नया मूवी का डे, नए रिलीजेस, और इस इंडिपेंडेंस डे यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस दोनों, बाय द वे अ वेरी हैप्पी पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस टू आवर लिसनर्स. तो बैक टू द फिल्म्स दैट वी आर गेटिंग रिलीज्ड दिस वीकेंड. बॉलीवुड ने एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज तैयार कर दिया है आज, क्योंकि आपको अगर हिस्ट्री, इमोशंस और पावरफुल परफॉर्मेंसेस पसंद है तो थिएटर्स में इज रिलीजिंग बटवारा 1947. और सनी देओल का एक बार फिर से उनका वो जो इमेज है ऑफ दैट एंग्री एंड यंग, क्योंकि बुढ़े तो वो हुए नहीं ना, अभी भी ही इज लाइक दैट पावरफुल 2.5 किलो का हाथ का सनी देओल. फिल्म हमें ले जाती है 1947 के पार्टीशन में, इंडिया एंड पाकिस्तान के पार्टीशन में, और पावरफुल परफॉर्मेंसेज बाय नॉट ओनली सनी देओल दिस टाइम, वी कैन ऑल्सो सी शबाना आजमी इन अ पिवोटल रोल. आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी इन द थिएटर्स एंड गेट दैट एड्रेनालिन व्हिच आई वांट टू फील फॉर दिस मूवी. आपको भी अगर सनी देओल एंड you know, history wale movies thode zyada pasand hai, then definitely you can head to the theaters and watch Batwara. And my favorite Preeti Zinta is back on the big screen. So there's a special place, special affection for this movie that I personally have. I know bahut sare log aise jo Preeti Zinta ke fans hai meri tarah. Filhal Batwara is one of the films again which is releasing along with another hit फ्रेंचाइजी से आवर अपन टू, उसके बारे में बात करेंगे फिलहाल इस गाने के बाद, क्योंकि यार बातें से ज्यादा फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है. तो चलो एंजॉय द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी आवर अपन टू.

That was Mustafa Zahid with Tera Mera Rishta from the reprised version of Tera Mera Rishta, rather, in the movie Aavara Pintu, which is releasing today. Aur jaise ki Raghav Jowal ne kaha hai ki sari, yani ki Akka Bollywood ek taraf aur Imran Hashmi ek taraf, and I truly believe in that because क्या ही कहे भाई, इट इज़ इमरान हाशमी. नाम ही एक्साइटिंग है, नाम मतलब एक्साइटमेंट के लिए नाम ही काफ़ी है. आवारा टू लेडीज एंड जेंटलमैन इज रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड टुडे, और इमरान हाशमी एक बार फिर शुभम पंडित के रूप में वापस आ रहे हैं. जिन लोग ने 2007 में रिलीज हुई मूवी आवारा अपन देखी थी, उनके लिए ये सिर्फ एक सीक्वल डेफिनेटली नहीं है, एक इमोशनल रीयूनियन है. एक्शन है, रोमांस है, सैक्रिफाइस है, और वो सोलफुल फील है जिसने पहली फिल्म यानी कि आवारा अपन को एक कल्ट क्लासिक बना दिया. आई मीन आई लव्ड द मूवी सो मच. मैंने दो बार देखी है और वो भी थिएटर्स में जाके. तो उन लोगों की तरह जो थिएटर्स में, मतलब मेरी तरह, आप अगर थिएटर्स में मूवी इंजॉय करते हो, देन आवारा अपन 2 इज योर ऑल्टरनेट ऑप्शन फॉर दिस वीक. और अगर मेरे इस लिंक से आपको पिछले वाले आवारा अपन की कुछ झलक याद आ गई, कुछ सोलफुल म्यूजिक याद आ गए, तो मैं और भी ताजा कर देती हूँ. बैक टू दिस ट्रैक फ्रॉम द मूवी आवारा अपन. दिस इज फॉर ऑल द इमरान हाशमी फैन लिसनिंग टू फनी शेयर रेडियो राइट नाउ. दिस इज अ फिल्मी फ्राइडे गोइंग ऑन विद मी रमिता.

What a beautiful track from the movie Avarappan. और ये तो रही आज दो back to back, दो big releases के बारे में बातें. अब चलते हैं to that OTT releases, यानी कि वो picture जो अभी इस वक्त stream already हो चुकी है, and that is Cocktail 2. तो अभी आप अगर अपने काम से wrap up कर रहे हो या फिर lunch में हो and plan बना रहे हो अपने family और friends के साथ कि शाम को क्या करें, I have a movie recommendation for you as an OTT streaming movie for this weekend. That is Cocktail 2, जो बहुत ही एक पॉपुलर OTT चैनल पे रिलीज हो रही है. जैसे कि आपको पता ही है, इट्स अ सीक्वल टू द मूवी Cocktail, विच रिलीज लॉन्ग बैक इन 2012. इस बार शाहिद कपूर, कृति सानन एंड रश्मिका मंदाना वो बैक विद देयर रिलेशनशिप ड्रामा. चाहे दोस्ती, प्यार, मॉडर्न रिलेशनशिप और उनके बीच कॉम्प्लिकेशंस जो भी है, नए अंदाज में आपके सामने इट इज सर्व्ड ऑन अ प्लेट एंड ब्लैंकेट, पॉपकॉर्न और सोफा के साथ इस वीकेंड एंजॉय करना आपका फिल्मी फिल्म ओटीटी फिल्म ऑफ दिस वीक विच इज Cocktail 2. बातें बहुत हो गई, थोड़े उसके गाने भी सुन लेते हैं. आइए, लिसनिंग टू फिल्मी फ्राइडे विद मी रिमिता ओनली ऑन फनी शेयर रेडियो 104.9 FM.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Dad, property papers kahan hai?
4: Laptop mein.
3: Investment?
4: Google Drive.
3: Insurance? Passwords?
4: Beta, don't worry, mujhe sab pata hai.
3: Dad, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
5: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
8: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
9: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit nextgenspeakersacademy.com. That's nextgenspeakersacademy.com.
10: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
11: Hi, USA. This is Imran Hashmi.
12: Hi, this is Disha Patni.
11: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio.
12: One of Bollywood's most loved cult classics returns.
11: I'm back as Shivam Pandit, and this time the emotions are deeper. The music is set to touch every heart once again. And the legacy continues. Witness Awarappan 2 in cinemas from 14th August.
13: You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is a Filmy Friday, जहाँ वक्त हो चुका है आपके, you know, घर के सवाल का, मतलब घर का सवाल है भाई, ऐसे ही कुछ भी नहीं हम बात कर सकते. That's for everything important as your home purchase या home mortgage. You need an expert, और उसी वजह से आज हमारे स्टूडियो में it is a time for our mortgage expert from myfamilyhomeloan.com. We have Ms. Shefali Panjwani with us. A very warm welcome to you, Shefali ji, to Funisha Radio. Hello.
14: Happy Friday to all Funisha listeners.
13: Happy Friday to you too. Ma'am, सबसे पहले I just want to ask you only one simple question, कि अगर होम ओनर के पास प्रॉपर्टी में इक्विटी है तो क्या रीफाइनेंस के थ्रू कैश एक्सेस किया जा सकता है?
14: बिल्कुल, अगर होम ओनर के पास प्रॉपर्टी में सफिशिएंट इक्विटी है तो कैश आउट रीफाइनेंस के थ्रू इक्विटी का कुछ पोर्शन कैश में एक्सेस किया जा सकता है. इन कैश जैसे उनको कुछ रिनोवेशन करना है, होम रिनोवेशन, डेट कंसोलिडेशन, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट या किसी और फाइनेंशियल नीड के लिए उसे यूज किया जा सकता है व्हेन दे डू कैश आउट रीफाइनेंस एंड यूज देयर इक्विटी. लेकिन अवेलेबल कैश अमाउंट डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू, आपकी करंट मॉर्गेज बैलेंस पे और आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पे, और उसके ऊपर लोन गाइडलाइंस डिपेंड करेगा. जैसे आपको आप कितना क्वालिफाई कर सकते हो, जो बेसिकली होता है क्रेडिट स्कोर के ब्रैकेट्स में जो फॉल ऑफ होता है, दैट क्वालिफाइज यू अप टू व्हाट लोन टू वैल्यू अमाउंट यू कैन कैश आउट. एंड फॉर रीफाइनेंस यू कैन कॉल अस, वी हैव अ जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस प्रोग्राम. And also on purchase and refinance, we have our $2,000 best price guarantee. You can call and we can help you as per your scenario and discuss with you what suits best for you.
13: मैम, रीफाइनेंस की जब बात हो रही है तो मेरा सवाल आपसे है कि होम घर खरीदने के टाइम में कैसे पता चलेगा कि रीफाइनेंस करना फिनेंशियली बेनिफिशियल है या करंट मॉर्गेज को कंटिन्यू करना ही बेटर है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट दिस.
14: ग्रेट क्वेश्चन. रीफाइनेंस तब बेनिफिशियल होता है जब आपकी मंथली पेमेंट पोटेंशियली कम होगी, इंटरेस्ट रेट इम्प्रूव होगा और आपके लोन टर्म्स भी बेटर आपको मिलेंगे जो आपके करंट है, देन इट इज बेनिफिशियल. या आपको होम इक्विटी एक्सेस करना है, जैसे यू हैव अ इक्विटी बिल्ड आउट एंड यू वॉन्ट टू एक्सेस दैट इक्विटी एंड इफ योर करंट लोन टर्म्स इज नॉट दैट ग्रेट, इफ यू गो लाइक लेट्स से some people have a hard money option or they go through a private investor and they want to refinance to a long term loan program. So in those case scenario, it is beneficial for them to refinance and get the equity out there if they want it. If they don't want it, then just do a straight refinance and get better loan terms and rates. Aur dusri ek cheez jo hai, khali lower rate hi nahi dekha जाता है. दैट्स नॉट इनफ टू सी. ऑलवेज पीपल लाइक ओके रेट लोअर करना है, रेट लोअर करना है, इसके लिए रिफाइनेंस करना है. दैट्स ओके, दैट्स वन ऑफ द रीजन. बट यू शुड ऑल्सो लुक इन टू योर टर्म्स, वॉट टर्म्स यू हैव ऑन योर लोन. इफ दैट्स वॉट समथिंग यू वॉन्ट टू लुक इन टू इट एंड गेट अ बेटर टर्म्स विच इज बेनिफिशियल टू यू, देन यू शुड थिंक अबाउट द रिफाइनेंस.
13: Thank you so much, Shefali ji, for all the information that you just provided. Can you please guide us or our listeners, how would they contact you for other further insights?
14: Sure, they can call me at 469-734-3338. Again, my number is 469-734-3338. Thank you
13: so much. Or you can also connect through their website, which is myfamilyhomeloan.com, and get all the questions regarding your house buying procedure, mortgage solution, anything that is related aapke sapno ke ghar ke liye. Thank you so much, Shefali ji. We will connect with you next week. Till then, have a great weekend ahead.
14: You all too.
13: Thank you. And let's continue with the Filmy Friday. खूबसूरत सा गाने के बाद मिलते हैं उस पार.
15: कल हम कूलर के मोटर की बाइंडिंग करा के आए, पर हम पाते हैं फुल इंग्लिश स्कूल के बताए. I love you.

0: 45 minutes past 1 o'clock. You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This Filmy Friday with me, Ramita. Jahan pe waqt ho chuka hai giveaway ka. And the giveaway is from the Fun Pizza Kitchen. Jo ki lekar aaye hai unke brand new Mexican inspired pizza lineup. To ye pizza sirf pizzas nahi hai bhai log. They are a full on flavor fiesta. Yes. I mean, हम इंडियन तड़का लगा के पिज्जा वहाँ के तो बहुत फेमस है ही. Recently they have launched this, as I said, multiple vegetarian and non-veg options on pizza, which are definitely Mexican inspired. चाहे वो पोयो लोको हो या फिर सी फूड फैक्ट सिन्योर कैमेरॉन या फिर लोडेड मूचो माचो पॉर्क. Every bite is bold, exciting and is definitely impressing. So ये सब जीतने के लिए या फिर एक $10 गिफ्ट कार्ड जीतने के लिए फ्रॉम फन पिज्जा किचन ऑल यू नीड टू डू इज टू गेस दिस डायलॉग फ्रॉम द मूवी इट इज टेकन फ्रॉम. बहुत ही सिंपल है, डायलॉग सुनिए, कॉल कीजिए. स्टूडियो का नंबर तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो मैं वापस से बता देती हूँ, 9722355555. कॉल मी एंड टेल मी कि ये जो डायलॉग है कौन से मूवी का है. और डायलॉग गेस करते रहिए, फिलहाल सुनते रहिए.
1: प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है. और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो. लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एंड बुलशिट, शी इज वरीड यार. उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज़ इज़न्ट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स. सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती है मन करता मुंह में कुछ छोड़ दूं. ट्रस्ट मी यार, 6 महीने में आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने. अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियां. रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस. इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा.
0: सुन लिया. और मुझे कॉल्स भी आने लग गए. यस आई नो, आपको भी पता है. फिलहाल इसके सीक्वल का थोड़ा गाना सुनते रहिए व्हाइल आई डिसाइड के कौन है इस $10 गिफ्ट का विनर.

taken from the movie Pyar Ka Panchnama 2. Yes, but the answer was Pyar Ka Panchnama. Aur sahi jawab dene wale ka naam hai Bharat ji. Bharat ji, congratulations. You have won this $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. Baki log jo abhi bhi call kar rahe ho, yaar, निराश ना हो. हमारे फनी शेयर रेडियो पे हर घंटे कुछ ना कुछ गिवअवेज हम करते रहते हैं, तो स्टे ट्यून्ड टू विन द गिवअवे एंड एंजॉय द बेस्ट म्यूजिक इन टाउन. दिस इज रुमिता विद फिल्मी फ्राइडे ऑन अ फिल्मी आफ्टरनून.

What a beautiful track from the movie Happy New Year, sung by Shreya Ghoshal and Arijit Singh. You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. मैं हूँ रमीता and वक्त आ गया है कि मुझे आपका जो हेल्थ है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करने का, क्योंकि यू नो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो उनके साथ जितना भी आप टाइम स्पेंड करते हो, आपके परेशानी के बारे में आप उन्हें बताते हो, वो आपके साथ कंसल्ट करते हैं. और मैंने काफ़ी बार ऐसा नोटिस किया है कि बहुत ही कम टाइम मिलता है हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और उनके पास भी, आई मीन डॉक्टर्स के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं होता हमारे परेशानियों को दिल लगा के सुने और उनको जांच करें, क्योंकि यार बिजी होते हैं वो लोग, डॉक्टर्स हैं, क्या ही कर सकते हैं. बट ये तो जेनरिक बात हो गई. मैं बोलती हूँ स्पेसिफिकली, अगर आपको अपने डॉक्टर से थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, यानी कि 5 मिनट 10 मिनट ऐसा नहीं, बल्कि पूरे 30 मिनट, exactly that is what they are promising, and they who that is Passion Health Primary Care is promising you that your appointment will be scheduled for 30 minutes because truly understanding your health takes time bhai. Aur Passion Health walon ke liye na, aap sirf patient nahi ho, aap unke family ho. To chahe aap annual physicals ke liye unke paas ja rahe ho, ya fir anything, health issues that you're having, either for anxiety care, fibro scan, for alcohol related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, ya fir definitely anything that you have your health as a concern, then you can definitely visit Passion Health Primary Care, which is spread out throughout this metropolitan. कहीं भी हो, आप प्लेनो हो, रिचर्डसन हो, मैकनी हो, अर्विंग हो, एनीवेयर यू आर देयर, दे आर देयर टू हेल्प यू आउट, बिकॉज एज आई सेड, दे हैव बीन हेल्पिंग आउट द कम्युनिटी फॉर सो लॉन्ग, एंड फॉर यू एंड योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ योर कम्युनिटी, Passion Health Primary Care इज always there for you. So if to schedule and book appointment, 214-666-666, yani ki 214-666-6259 is the number where you should be calling them. Aur haan, appointment ki baat karu, to appointment aapko then on then usi din mil sakta hai, hai na? Definitely Passion Health Primary Care for you, ladies and gentlemen.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
6: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
7: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
8: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
8: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन. Available. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
11: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

What a beautiful, beautiful, beautiful track from the movie मैं वापस आऊंगा. यू नो, कभी कभी एक गाना या एक मूवी सीन इतना हमें इमोशनल कर देती है, या इतना हमें, यू नो, बोलते हैं ना, इट टचेज द राइट कॉर्ड. इट टेक्स यू बैक टू योर सेल्फ, जहाँ पे आप, पता नहीं, आप शायद जीना चाहते हैं उस मोमेंट को, उस फीलिंग को फिर से जीना चाहते हो. एंड दैट सॉन्ग, दैट मूवी, दैट मोमेंट्स, those are the moments which you live for. And this Filmy Friday, it's time for my favorite segment, and that is Bollywood Flashback. Aaj flashback liye chalte hain ek film jisne family entertainment ka matlab hi badal diya hai tha. You know, Salman Khan, Madhuri Dixit, aur wo shaadi ka atmosphere jo aaj bhi हर इंडियन वेडिंग में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है. उनके जो गाने, चाहे वो दीदी तेरा, देवर दीवाना, जूते दो पैसे लो, पहला पहला प्यार, सच बताइए इस फिल्म ने कितनी शादियों का प्लेलिस्ट डिसाइड किया होगा. और मुझे लगता है कि हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो टीवी पर ये फिल्म आए अभी भी, आई मीन इन इन यू नो केबल टीवी जो हमारे आते थे, और अभी भी OTT में भी मौजूद है ये मूवी. आई नो आप लोग गेस कर चुके हो कि मैं किस मूवी की बात कर रही हूँ, पर हर फैमिली में अभी भी ये मूवी एज अ ड्राइंग रूम वॉच, इट इज़ अ मैंडेट. आज भी हम रिमोट छुपा के रखते हैं अगर हम आपके हैं, कौन आपके टीवी के सामने है. मेरा सवाल आप लोगों से बहुत ही सिंपल है कि अगर अभी ये मूवी या कोई और मूवी जो पुरानी है, अगर आप फिर से उसे जीना चाहते हैं एट थिएटर्स, तो वो मूवी कौन सी होगी? चाहे वो रोमांटिक मूवी हो, या एक्शन हो, या फिर एनी फैमिली ड्रामा, जस्ट लाइक हम आपके हैं कौन है. अगर आप चाहते हैं फॉर अ रियल रिलीज ऑफ एनी बॉलीवुड मूवी, तो वो कौन सी होगी. फिलहाल लेट्स हॉप इनटू दिस फ्लैशबैक विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी हम आपके हैं कौन.

You're listening to 104.9 FM Funny Shah Radio. This is Filmy Friday with me, Rumita. और इस गाने से पहले मैंने पूछा था कि अगर आप ऐसी कोई मूवी चाहते हो जो री रिलीज हो और आप उसे थिएटर में जाके फिर से देखना चाहते हो, बहुत ही काफी लोग चाहते हैं कि काफ़ी मूवीज़ ऐसी आई है जो री रिलीज हो चुकी है और इक्वली वो क्रेज़ बरकरार है. तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसका नाम है ईथन, एंड ही रिक्वेस्टेड दैट आई वॉन्ट टू वॉच कभी खुशी कभी गम ऑन थिएटर्स. आई मीन थैंकफुल टू योर पेरेंट्स हु आर मेकिंग एन एफर्ट टू इंट्रोड्यूस द राइट काइंड ऑफ बॉलीवुड एंड इंस्टिल द ड्रामा ऑफ बॉलीवुड इन एंड इम्बाइब इट विद इन यू, सो दैट कभी खुशी कभी गम अगर आप थिएटर्स में जाके देखना चाहते हो बेटा, प्लीज गो एंड वॉच इट एंड यू विल लव इट. ट्रस्ट मी, I was 11 when it released. Okay, too much of information. You're listening to 104.9.

describe it within you so that कभी खुशी कभी गम अगर आप थिएटर्स में जाके देखना चाहते हो बेटा प्लीज गो एंड वॉच इट एंड यू विल लव इट ट्रस्ट मी आई वॉज 11 व्हेन इट रिलीज ओके टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो वैसे ईथन ने कॉल करके एक गाना रिक्वेस्ट भी किया था विच सरप्राइजिंगली इज अगेन अ सॉन्ग बिफोर ही वॉज बॉर्न सो आई नो टेक्निकली ये उनके मम्मी पापा के लिए सो आई बिलीव दे आर शाहरुख खान फैन इज इट Ethan ke mummy papa, this song is for you.

You're listening to 104.9 FM, Funny Show Radio. This is Filmy Friday with me, Ramita. और बातें तो होती रहती है हमारे फिल्मों की, but कभी आपके investment के बारे में सोचा है? नहीं सोचा है ना? क्यों सोचोगे? हर दिन, हर सुबह से शाम अपने काम पे तो जाते हो आप, you go and earn your salary, but उसके investment के बारे में नहीं सोचते हो, उसके financial strategies के बारे में. पैसा आ तो रहा है, but उसे रखना भी तो है. इसीलिए CPA सुधीर पाई is here to help you with my time equity, जो कि help करते हैं individuals और families को अपने smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities and as I said, some alternative investments. तो चाहे आप long term wealth plan कर रहे हो, retirement plan कर रहे हो, या फिर अपने investment या पैसे को simply grow करना चाहते हो, My Time Equity is also offering personalized solution designed around your goals. Visit mytimeequity.com or you can simply call 469-702-1272. That's 469-702-1272.

2:30 PM it is, यानी कि मेरे जाने का वक्त आ गया है. पता नहीं चलता है एवरी फ्राइडे आपके साथ ये 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं. दिस इज रुमिता साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिल्मी फ्राइडे. जाते जाते एक रिक्वेस्ट फ्रॉम मिस्टर राम कुमार जी, उनको पुष्पा का गाना सुनना था आज, तो फिर चलिए. Your wish is my command. See you guys next week, same time on Filmy Friday. Have a great weekend ahead and keep listening to 104.9 FM Funisha Radio.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
2: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
5: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ।
8: Front page का तो पता नहीं, पर तेरा page 3 में होना मेरी गारंटी है।
7: कैसे?
8: Page 3 eatery?
7: No, not another restaurant again.
8: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
7: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं।
9: Page 3 eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
13: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
12: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच आज की दोपहर हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए. रिमिता, थैंक यू फॉर एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल शो एज ऑलवेज. और मैं आपके साथ अब मौजूद हूं 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक, यानी कि ये 2.5 घंटे आई विल बी हेयर विद यू. मैं हूं किरण, दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और आज है जी फ्राइडे. Thank God it's Friday. ये मेरा फ्राइडे, हमेशा मैं बताती हूँ आपको, एक तो मुझे वैसे ही फ्राइडे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सैटरडे एंड संडे. एंड देन अब मुझे फ्राइडे और मजीद क्यों अच्छा लगने लगा, क्योंकि फ्राइडेज को होता है किड्स जंक्शन. 3 बजे से 4:30 बजे तक लेकर आती हूँ आपके लिए किड्स जंक्शन, जिसमें हम बात करते हैं बच्चों से लाइव, फोन कॉल्स लेते हैं, रिक्वेस्ट लेते हैं. एंड वी हैव एडेड अ न्यू सेगमेंट इन किड्स जंक्शन एंड दैट इज चिल्लर पार्टी. फ्रॉम 4 till 4:30 PM एवरी फ्राइडे I invite an RJ from you guys to come to the studio and host, co-host the show with me from 4 till 4:30. Hamara ye time hota hai so that aapka school khatam ho jaye. And that is called Chiller Party right here on Kids Junction. And we have been having beautiful RJs here. Nanni Munni se hamare RJs aate hain aur mere saath is show ko host karte hain. So if you want to be a participant in that Chiller Party, all you have to do is go to our social media page, especially Instagram. Neeche uske jab hum video dalte hain every Friday, we release a video. Uske neeche aap apna naam, apne bachche ka naam aur apna unki age aur unki class likhiye. And then we will get back to you, grade, or we will get back to you of how your child can become the next RJ or the co-host with me right here on Chiller Party. So ye hua ye. और फ्राइडे का जो हमारा पहला आधा घंटा होता है 2:30 से 3, वो हम करते हैं मिक्स पॉट. कुछ नए गाने और उनसे जो मुझे पुराने का कुछ पुराने गाने और उनसे जो मुझे नए गाने याद आते हैं वो मैं आपके लिए प्ले करती हूँ. सब फिलहाल मेरे जहन में ये 2 दिन से गाना बड़ा चल रहा था, मैंने कहा आज इसी से आगाज करेंगे. दिस इज टेकन फ्रॉम द मूवी कौन सी, प्रेम रोग.

फिल्म प्रेम रोग से लिया गया ये गाना राज कपूर साहब की डायरेक्टेड ये फिल्म जिसमें ऋषि कपूर और पद्मनी कोल्हापुरी साथ ही साथ शम्मी कपूर, नंदा, तनुजा, ओम प्रकाश, मतलब एक से बढ़कर एक कास्ट. मेरी मतलब मुझे ये प्रेम रोग जो मूवी है ये बहुत ज़्यादा पसंद थी. अभी भी खैर हम उसे देख सकते हैं, ऑल्दो थिंग्स हैव चेंज्ड, लेकिन स्टिल जब आप प्रेम रोग देखते हो तो यू फील द कनेक्ट पद्मनी कोल्हापुरी की वो इमोशनल ट्रॉमैटिक जर्नी जो हमें प्रेम रोग में दिखाई गई है. ऋषि कपूर का वो प्यारा सा सिंपल सी लव स्टोरी, द लव दैट ही डेवलप्स फॉर दैट गर्ल एंड देन हाउ ही स्टैंड्स फॉर हर व्हेन शी नीडेड हिम द मोस्ट, दैट इज द हाईलाइट ऑफ दिस मूवी फॉर मी. दिस इज प्रेम रोग फॉर यू. 1982 में हुई थी जी ये रिलीज. अच्छा, गलियां ये चौबारा से मुझे ये गलियां याद आ रहा है, तो जो हमारा एक विलन का गाना था, तो मैं आपके लिए गलियां प्ले करने लगी हूं मिक्स पॉट में. कुछ पुराना कुछ नया आपके लिए प्ले करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने ख्वाबों के घर की तलाश में हैं तो फिर जी ड्रीम होम मॉर्गेज वो कंपनी है जिसे आपने कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि वो आपके लिए बेहतरीन सही लोन आपके लिए फाइंड करते हैं जो आपकी नीड्स और आपकी रिक्वायरमेंट्स के इर्द गिर्द टेलर किया जाता है. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर, वेयर यू स्टैंड, दे टेलर दैट लोन अराउंड इट. 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज फैमिलीज को हेल्प कर रहे हैं टू अचीव देयर होम ओनरशिप ड्रीम. 50 स्टेट्स में लाइसेंस्ड हैं. देयर एक्सपीरियंस टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. तो आज ही स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी को कॉन्फिडेंस के साथ विद ड्रीम होम मॉर्गेज. गिव देम अ कॉल 972-245-5626. 972-245-5626 उनका नंबर है, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट करना मत भूलिए. दिस इज ड्रीम होम मॉर्गेज.com एंड दिस इज द लेटेस्ट गलियां.

जी हाँ, और इसी के साथ आपको बताती चलूं जी, कल सबसे पहले तो आप सबको जो आज 14 अगस्त को पाकिस्तान की जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. होप यू आर हैविंग फन एंड यू हैव अ लवली लवली डे. और साथ ही साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं आप इंडियाज इंडिपेंडेंस डे एट IANT's आनंद बाजार 2026, विच इज हैपनिंग टुमारो, दैट इज सैटरडे ऑगस्ट 15th फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एट कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. इंडोर इवेंट है तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी कि बाहर आपको गर्मी की वजह से डील करना पड़ेगा कुछ. और जो सबसे स्पेशल बात है वो ये कि इट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन. नो एंट्री टिकट्स, कोई पैसे नहीं आपको देने. आइए और एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक इंडियन फूड, ग्रैंड परेड, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, लाइव म्यूजिक होगा, शॉपिंग का भी इंतजाम है. सो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ आइए, सबको साथ ले आइए और एंजॉय कीजिए. आइए एंड बनिए हिस्सा नॉर्थ टेक्सस के सबसे बड़े इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का. दिस इज IANT Anand Bazaar 2026. All right, we are tuned into Mixpot. I have another 11 minutes with you. Mixpot में कुछ एक नया गाना और एक पुराना गाना, मतलब हम शुरुआत पुराने से करती हैं और उससे जो मुझे नया याद आता है वो आपके लिए प्ले करती हूँ. एक गाना मुझे और बहुत प्यारा फिल्म शक्ति से याद आ रहा है. अमिताभ बच्चन जी और स्मिता पटेल पे पिक्चराइज्ड इस गाने को वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स कहा जा सकता है. दिस इज जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया.

रमेश सिप्पी की डायरेक्टेड ये मूवी सलीम जावेद साहब ने इस मूवी की लिखी थी कहानी. दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, स्मिता पटेल, अमरीश पुरी, कुलभूषण, मतलब ये जमाने वो लोग. अब जब आप इन मूवियों के नाम पढ़ते हो जो स्टार कर रहे थे इन मूवी में, तो आप कहते हो यार एक से बढ़कर एक स्टार था इस मूवी के अंदर, क्या बात है. तो सुपरहिट तो मूवी ने होना ही था. और आपको बताऊं कि जो एवरग्रीन हिट्स की लिस्ट बनती है उसमें ये गाना जाने कैसे कब कहा की एंट्री है. अगर आप कभी एवरग्रीन लिस्ट देखिए तो उसमें जाने कैसे कब कहा विल ऑलवेज बी देयर. लिरिक्स तमाम गाने जो इस मूवी के थे उसके लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने, और म्यूजिक कंपोज किया था आर डी बर्मन साहब ने. अगली बार आपको एक और गाना इस फिल्म का सुनाऊंगी मिक्स पॉट में. आई एब्सोल्युटली लव दैट सॉन्ग, दैट इज हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, बट दैट इज वो कहानी अगली बार के लिए, अगले एपिसोड के लिए. फिलहाल जाने कैसे कब कहां से मुझे याद आ गया एक और गाना, दैट इज जाने क्यों लोग प्यार करते हैं.

0: जी हाँ, और अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर को या ऐसे पीसीपी को ढूंढ रहे हैं जो आपके साथ बैठे, थोड़ा कम से कम आधा घंटा तो आपको टाइम दें, आपके मसाइल सुने, आपके साथ क्या मसला है, तो ऐसा मतलब कई बार हमारा होता है कि जी डॉक्टर साहब आए, 5 मिनट हमें देखा, बस हाजिरी लगाई और चल दिए. लेकिन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता. हर अपॉइंटमेंट आधे घंटे के लिए स्केड्यूल की जाती है ताकि वो आपकी हेल्थ हिस्ट्री और सब कुछ समझ सकें. एंड 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स फॉर आर एनुअल फिजिकल एग्जाम. एंजाइटी केयर आपको चाहिए, फाइब्रोस्कैन रिलेटेड, अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हैं आपके, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की टेस्टिंग आपने करानी है, और एनी अदर रिक्वायरमेंट, प्लीज कॉल पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर 214-666-6259. 214-666-6259. This is where you're going to call. They are really passionate about taking care of your health. So be passionate about it and give them a call.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ.
4: तो कैरेटलेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस.
3: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
4: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स. यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग.
5: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेटलेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस. Carrot Lane, now open in Frisco, next to Tanishq.
6: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर, या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
5: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
7: ये तारा वो तारा हर तारा.
8: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
9: चीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
10: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
9: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
10: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
9: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
9: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
11: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
12: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
13: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
14: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
15: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
14: Fikar not. We have the perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
15: Ajee, sunte ho?
16: Ajee, nahi. Ajee, sunte.
11: The OG of tax planning, Ajee Fintax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday, 9:45 a.m. Only on Funasia Radio. 90s ke gaane sirf hits nahi, hamari yaadein hain. Aur ab wo legendary awaaz aa rahi hai live to Plano. वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो. लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल. टिकट्स एट eventbrite.com. मोर इन्फो 214-869-2668. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप.
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल. Phonasia 104.9 FM.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
3: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं।
8: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
14: लिया।
13: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
14: नहीं आया।
13: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772। That's 972-863-7772.
8: Visit www.senadainc.com today.
15: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
16: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
15: कहाँ?
17: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
18: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
19: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
7: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
14: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
20: जिंदगी एक रंगमंच है
21: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सस टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
14: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com.
22: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
23: कितने आदमी थे?
24: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

Alright, जी, giveaway आया था चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन की तरफ से. You had this opportunity of winning $10 off your dine-in bill of $50 or more. Thank you guys, all of you, जिन्होंने मुझे कॉल करके अपनी स्टोरीज बताई. You shared your, you know, the first 2-3 days of school and what happened, something interesting. Tarish, Anahita, Ali and many more. और अभी भी फोन लाइन बाज हो रही हैं, लेकिन हमारा कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है. और हमारे जो विनर हैं आज के, वो हैं जी गाइज, लकी विनर में निकालती हूँ. जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हो, वो मैथ के फॉर्मूले में जाके एक लकी नंबर निकलता है, और वही आज के हमारे लकी विनर हैं. द थर्ड कॉलर विच इज अली खोजा. अली, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दिस इज अ $10 ऑफ योर $50 बिल. सो गिव अस 2 days. योर नेम एंड नंबर विल बी सेंट टू द रेस्टोरेंट एंड देन यू विल हैव 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड avail your gift card, in fact your $10 off $50 bill, dine in only. And for all of you who participated, guys, thank you so much. Your participation matters a lot.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
8: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
9: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
10: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit nextgenspeakersacademy.com. That's nextgenspeakersacademy.com.
11: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
12: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं.
11: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
12: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
11: इंडिया तक.
12: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
13: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
14: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
15: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
16: बेटा, 95% आए?
17: हाँ मम्मी.
16: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
18: मेरा?
16: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
18: वो
13: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions.

0: किड्स पार्टी किड्स जंक्शन में एक्चुअली चिल्लर पार्टी का वक्त आ चला है. मैं हूं किरण आपके साथ. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण एंड आर प्यारी सी नन्नी मुन्नी सी आरजे इज इन द स्टूडियो हु इज गोइंग टू होस्ट दिस को होस्ट एक्चुअली दिस नेक्स्ट हाफ एन आवर विद मी. लेट्स वेलकम हर.
1: Hello, Dallas. I'm Laksha, your radio, your RJ for the day on Chiller Party on Finish Your Radio today. We're going to talk about back to school fun facts about animals and funny, favorite and funny moments. Get ready for some fun and stay tuned.
0: Absolutely, stay tuned. And after this song, we are going to start. Laksha, I am so excited you are here and thank you so much for taking that time out.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Ocho.
4: Hoko.
3: Ocho.
4: Hoko.
3: Ocho.
4: It's Hoko. अरे बस भी करो यार।
5: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
4: नाम Hoko हो या Ocho क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
2: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: आने वाले खाने में डोसा।
2: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
8: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
2: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 or Custer Junction.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route. Rerouting.
10: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
11: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
10: क्यों?
11: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
10: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
9: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
11: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
12: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
9: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
2: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
13: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
16: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
3: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

Fun Asia Radio पे tuned in है आप. Afternoon Drive Time with सुनहरी किरण में. It is time now to give you the traffic update which is brought to you by the law offices of Omar Khwaja. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं जी कि अगर आप unfortunately किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसिडेंट है तो दिस सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. आपकी हेल्थ इज वॉट मैटर्स द मोस्ट, बोथ योर मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ. इसी के साथ डीलिंग विद द इंश्योरेंस, पेपर वर्क, लीगैलिटीज, बहुत सारी निटिग्रिटीज होती हैं सिचुएशन की जो हमें मालूम ही नहीं होती. आपको एक ऐसा अटर्नी चाहिए जो आपकी तरफ से ये केस फाइल करे, लड़े और आपको जितवाए. एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी ओमर ख्वाजा. नॉट ओनली विल दे फाइट योर केस, दे विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. एंड द टॉप ऑफ द वो जो कहते हैं ना सोने पे सुहागा बात, वो ये है कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप जीत नहीं जाते इस केस को. सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. मुश्किल के वक्त में राहत की खबर आपको आ रही है द लॉ ऑफिसर्स ऑफ अटर्नी ओमर ख्वाजा की तरफ से. गिव देम अ कॉल फॉर फ्री कंसल्टेशन. दैट नंबर इज 4693005046, 4693005046. या आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं attorneyomar.com. और इस वक्त हमें एक इंसिडेंट यानी कि एक कोलिजन नजर आ रहा है. दैट इज एट US-75 टूवर्ड्स नॉर्थ पार्क बुलेवार्ड साउथ बाउंड, जिसकी वजह से 3 out of 6 लेन्स आर ब्लॉक्ड इंक्लूडिंग द एग्जिट लेन्स ऑफ साउथ बाउंड. सो अगर आप यहां पहुंचने वाले हैं तो बी केयरफुल. द सिवेरिटी ऑफ द इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई. द एम्बुलेंस हैज बीन कॉल्ड एंड द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड अबाउट 25 मिनट्स अगो. सो प्रॉबेबली आपको यहां पर अभी बहुत सारा बैकअप बिल्ड होता हुआ नजर आएगा. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई सी. एक्चुअली While I'm talking to you, another disabled vehicle has been reported at 635 towards Military Parkway southbound, jiski wajah se 2 lanes are blocked. Some backup is expected here as well. But that's pretty much all that I have for you where your traffic is concerned, right here on your afternoon drive time with Suneri Kiran.

वैसे आजकल का मौसम ऐसा है कि कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा. गर्मी की शिद्दत आसमान पे पहुंची हुई है जी. फ्राइडे अगस्त 14th 4:43 PM इन द स्टूडियो एंड इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द वेदर अपडेट. सिटी ऑफ मिकनी में इस वक्त 101 डिग्रीज है. हाउएवर इट फील्स लाइक 107. दिन रहा हॉट ऑफकोर्स सनी विद हाईज अराउंड 100 जबकि हीट इंडेक्स वैल्यूज अप टू 107 और शाम रहेगी मोस्टली क्लियर विद लोज इन द अपर 70s. इट विल बी एक्सट्रीमली हॉट इन द इवनिंग एज वेल. 6.3 इज द पोलन काउंट विच इज मीडियम और यूवी इंडेक्स इज 10 विच इज ऑफकोर्स वेरी हाई. आज है फ्राइडे इवनिंग, ऑफकोर्स इट्स वीकेंड इवनिंग, सो अगर आपका कोई प्लान है बाहर निकलने का, यू आर हैविंग एन इवनिंग आउटिंग, यू विल बी आउटडोर्स, प्लीज कीप योर सनस्क्रीन्स हैंडी as well as keep yourselves hydrated, which is very, very important. Sunrise aaj ka hua 6:48 AM pe, jabke aaj ka sunset hoga 8:13, which is 8:13 PM. And before we move on, I must tell you this part of our show is brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. Chahe aap individual ho, aapka startup ho, aapka apna established business ho, AG Fintechs aapko offer karta hai innovative financial solutions that are tailored around your needs. क्या क्या ऑफर कर रहे हैं आपको? बुक कीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग, एज वेल एज बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशंस टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इसी के साथ बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज भी एजी फिनटैक्स आपको ऑफर करते हैं. दे हेल्प यू कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लायंट एज वेल एज फ्यूचर रेडी. तो उनको बनाइए अपना पार्टनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रांग फाइनेंशियल फ्यूचर. गिव देम अ कॉल. ये बात सारी सुन के आपके जहन में कोई भी सवाल उभरा है तो उसका जवाब आपको कॉल करके मिल जाएगा. दैट नंबर इज 4699429888 is the number. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, which is agfintax.com.

अगर आज आपका घर पे खाना बनाने का बिल्कुल नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल घर जैसा खाना आपको कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बताती हूँ. तंदूरी फ्लेम, दे आर लोकेटेड इन गार्लिन. दिस इज वेयर यू विल फाइंड ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स लाइक सिजलिंग तंदूरी प्लैटर्स, रिच करीज, साथ ही साथ कबाब्स एंड फ्रेश हॉट नान, सब कुछ एट योर डोर स्टेप भी आ सकता है. अगर आप केटर कराना चाहते हैं, ऑर्डर करिए, घर लाइए, वहां बैठ के खाइए. तंदूरी फ्लेम, दे आर लोकेटेड इन गार्लिन, डू नॉट miss it.

और जी आजादी वीकेंड चल रहा है, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू हु आर सेलिब्रेटिंग टुडे। पाकिस्तान की जश्न आजादी आप सबको मुबारक हो, एंड फॉर टुमारो इंडिया की जश्न आजादी यानी के इंडिपेंडेंस डे हो, सबको मुबारक। और इस आजादी वीकेंड अगर आपका दिल है कोई ज्वेलरी खरीदने का, कुछ कोई एनी पीस दैट यू वांट टू बाय, और इफ देयर इज एनी ओकेजन कमिंग जैसे कि कोई शादी ब्याह का इवेंट आ रहा है या कोई और माइलस्टोन, तो पीएमजे ज्वेल्स इज नाउ ओपन इन फ्रिस्को। दे आर ब्रिंगिंग ओवर 60 इयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सपीरियंस इन टाइम Indian craftsmanship, proudly associated with Mahesh Babu and Sitara. They are a trusted name for generations. So visit PMJ Jewels. They are located in Frisco on Main Street. Do not miss it.

0: और इस रक्षाबंधन फनेजियो और चौकटाव कैसीनो ड्यूरेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे एक्साइटिंग डेली प्राइजेस, जैसे कि एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज, डाइनिंग एक्सपीरियंस, एज वेल एज ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट. ऑल यू हैव टू डू इज make a 1-minute voice note of the most unforgettable memory with your sibling and WhatsApp at 214-837-7147. 214-837-7147 and you can win these prizes. Complete contest details is available in Funasia Radio's social media pages. You must be 21 years or older to participate. Terms and conditions apply and please play responsibly. That is all the time I have for you for today. I will see you Monday for 2:30 p.m. till 5 p.m. Have a lovely rest of your Azadi weekend and enjoy. I will see you Monday. Happy one.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
11: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
12: भूख लगी
13: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
14: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
15: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
16: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
17: Hello, Weekend Lunch Emergency.
12: helpline. How may I help you?
17: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
12: Fikar not. We have the perfect solution.
18: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
19: Accident ke baad insurance company se deal karna bahut mushkil ho gaya tha. Na wo help kar rahe the, na mujhe samajh aa raha tha ki kya karun. I felt completely stuck. Phir maine Omar Khwaja team ko call kiya aur sab kuch change ho gaya. Unhone sare calls handle kiye, meri taraf se baat ki aur ensure kiya ki mujhe fair treatment mile. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
18: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
20: इस रक्षाबंधन चौक टॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौक टॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
18: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.

0: ये डूबे डूबे डूबे साहब तो नहीं थे, पर ये डूबे गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, एंड इट वाज फ्रॉम द मूवी, क्या नाम था इस फिल्म का, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी फिल्म थी बट चली, थोड़ी सी तो चली फिल्म, इट डिडंट डू दैट वेल बट इट डिडंट डू दैट बैड ईदर। एंड इसमें प्रिया नहीं, नहीं क्या नाम है इनका, हमारी दीपिका, दीपिका पारुकोन विद अ यंगर एक्टर नजर आई थी इसमें। एंड आई थिंक जो अब फिल्में आने वाली हैं, जैसे कि आज आज ही है ना, हाँ यार आज अवारापन 2 का रिलीज है भैया, एंड इफ यू डोंट नो देन दैट मूवी इज ब्रॉट टू यू बाय फन एशिया फिल्म्स, एंड दैट इज़ वन मूवी दैट आई एम एक्साइटेड फॉर, क्योंकि जब अवारापन पहली आई थी एंड उसमें जो गाना था ना तेरा मेरा रिश्ता पुराना, दैट वॉज अ लवली ट्रैक, एंड जस्ट मेरे को तो बहुत पसंद आया, एंड मूवी बहुत पसंद आई, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द अवारापन नंबर 2। सो इफ़ यू आर अ बॉलीवुड लवर, गेट रेडी, द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, क्या आज तो हो ही गई है, बिकॉज इट्स ब्रिंगिंग बैक द इंटेंसिटी, इमोशंस एंड एक्शन दैट मेड ओरिजिनल अ कल्ट क्लासिक। इमरान हाशमी रिटर्न्स एज शिवम इन अ स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन, लव एंड सैक्रिफाइस, जॉइंड बाय दिशा पठानी। गुड इवनिंग दिशा जी, स्पेशल गुड इवनिंग टू यू दिशा जी। And the legendary Shabana Azmi is also in this movie, packed with breathtaking locations, powerful performances, and a soul-stirring soundtrack. Avarapan 2 is already creating massive buzz after its trailer launch. So stay tuned and do not miss Avarapan 2, releasing on today's date at a theater near you. Break ke baad aaya wapas.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Heere moti main na chahun.
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट, लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन। तन्मय ज्वेलर्स इन

0: Moving.
1: Dad, property papers कहाँ हैं?
2: Laptop में.
1: Investment?
2: Google Drive.
1: Insurance? Passwords?
2: बेटा, don't worry, मुझे सब पता है.
1: Dad, वही तो problem है. सिर्फ आपको पता है.
3: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
4: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
3: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
5: अरे यार, घर मिल गया.
1: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
3: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
1: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
3: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
1: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
1: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
7: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
13: सच में? सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन.

कई लोग परेशान हैं यार कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, लड़की परेशान है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा। ये तो परेशानी, चलो मैं मानता हूँ कुछ है यार, पर परेशानी तो ये है कि जो कैमरा है ना, कैमरा वो गोल होता है यार, पर वो फोटो रेक्टेंगल कैसे निकाल देता है। जिनकी शादी हो जाती है फिर ये नहीं सोचते, उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती, वो वर्ल्ड वर्ल्ड साइंस में चले जाते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। खैर, ये शो पे आज मैं क्यों हूँ, क्योंकि नवनीता जी नहीं है और मैं कर रहा हूँ जी फिल इन। दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो ऑल द वे टिल 7 o'clock। दिस इज द बिंदास शो एंड स्टूडियो लाइंस आर ओपन फॉर यू। नए अच्छे गाने, यू नो, पार्टी टाइप फीलिंग वाले गाने। आज फ्राइडे है यार, सैड गाने नहीं चलाऊंगा। उसके अलावा आप स्टूडियो की लाइन पे कॉल करें एंड आई विल ट्राई टू स्क्वीज इन योर रिक्वेस्ट। मैंने बात की थी कि हमारे एक बांग्लादेश के भाई हैं, भाई जो अपनी भाभियों को ओक्लाहोमा से लेके आए हैं, सागर भाभी को लेके आए हैं, सुमी भाभी को लेके आए हैं, फिरोजा भाभी को लेके आए हैं और रोमा भाभी को भी साथ लेके आए हैं। कहते हैं जी कि इंडियाज इंडिपेंडेंस डे मेला कल मिलके देखेंगे एंड दैट इज व्हाट यू शुड डू। इट इज एट द कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को, 2 PM ऑनवर्ड्स लाइव कॉन्सर्ट फॉर यू विच इज फ्रॉम वंडरफुल टैलेंटेड आर्टिस्ट। बहुत सारा खाना पीना, शॉपिंग एंड Grand Parade that you do not want to miss. Let's get you going for this Saturday. Saturday nahi hai, Friday. But chalo, let's get you in the mood for tomorrow also with the song selection that I have. Here we go.

रात के टाइम जब लाइट लुइट चली जाती है तो पिक्चरों में ये दिखाते हैं कि लड़कियां जब कैंडल जलाती हैं, फिर कहीं किसी कोने से आवाज आती है तो लड़कियां ये पूछती हैं, कौन है वहां, कौन है? जैसे भूत बोलेगा, मैं हूं राम शंकर, तेरे को तंग करने नहीं आया।

0: बोले चूड़ियां बोले कंगना, लेट्स सी हु डू वी हैव हियर, जो कुछ बोलना चाहते हैं जी। गुड इवनिंग टू यू फनेजिया, हुज दिस?
1: हेलो, गुड इवनिंग टू यू। दोबारा आ गया हूँ लाइन पे। सैयद एहसान,
0: सैयद जी होल्ड करेंगे आप मेरे लिए, मैं आपसे बात करता हूँ ऑफ द एयर। यू नो, अगर आपको लोग बोलते हैं ना, यू लुकिंग वेरी स्मार्ट, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो आप ना उनकी बातों से गुमराह नहीं होना आपने बिल्कुल भी, ठीक है? आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप अपने ड्राइवर लाइसेंस पे अपनी फोटो देखते रहें, ठीक है ना? दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू। ये लोग बहुत घबरा करते हैं कि आप इतने अच्छे हो जी, आप इतने स्मार्ट हो, बट यू नो ना, अपन चुपचाप अपनी आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट की फ़ोटो चेक करके रियलिटी चेक करते रहेंगे। और इज्जत की बात तो आप मुझसे करो ही ना, मेरे तो रात को मच्छर भी पैर छूने आते हैं, बात करते हो इज्जत की।

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
5: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं।
4: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
5: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
4: इंडिया तक।
5: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
2: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
2: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
7: पैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
2: विजिट पैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।

0: All right, सवाल मैंने पूछा था जी ये just before we went to the track and that was कि भाई ये जो D-Vibe restaurant है in Aubrey right on 360 next to Furistan which is a part of the Furistan you'll get any item from their menu if you give me a creative out of the box mere type wala zabardast type ka answer good evening to you Fun Asia who's this
1: This is
0: Tusharika. Tusharika, how are you? Tusharika, very different name, Tusharika. First time मैंने ये नाम सुना है. इसका मतलब
1: मैंने भी बस अपना ही सुना है.
0: अपना ही सुना है. चलो uniqueness है कम से कम इसमें. पर ये जो Tusharika है, आपको पता है इसमें क्या मतलब? Any reasoning for Tusharika? Any meaning to it?
1: Meaning है particles of snow.
0: Particles of snow. Oh, so you're like a snowflake, huh?
1: Yes.
0: But फिर आप इतनी गर्म क्यों हो जाते हो जल्दी-जल्दी पति की छोटी सी बात पे यार? Anyway,
1: गर्म नहीं है
0: कोई
1: गर्मी
0: बात
1: बहुत है।
0: गर्मी बहुत है मौसम का इसमें हालचाल खराब है ये बताइए कि जो चींटियां आपस में जाती हैं रुकती हुई कहीं ना कहीं आपने देखा नोटिस किया कि वो एक आपस में रुकती जरूर है
1: वो चीजें सुनाती हैं एक दूसरे को
0: क्या सुनाती है
1: पीजेस जैसे वो बताती हैं कि D-Vibe रेस्टोरेंट नौबरे में ओपन हो गया है
0: अच्छा ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देती है तुषारिका कहती है कि इन्फॉर्मेशन देती है हेलो तूने सुना है कि वहाँ पे D-Vibe खुल गया ओ माय गॉड आज ही जाके चेक करेंगे ऑल राइट तुषारिका आई हैव योर नेम इन द लिस्ट जस्ट लुक आउट फॉर योर नेम इफ यू विन आई एम गोना अनाउंस दैट आई एम गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर हियर लेट्स गो हियर गुड इवनिंग Fun Asia हु इज दिस रेडियो का वॉल्यूम अरे बाबा दिए वारी दिए वाह उठा ले रे बाबा रेडियो का वॉल्यूम कम कर लिया करो मालिक या मालकिन गुड इवनिंग मालकिन
2: तो देखो
0: गुड राम राम मालकिन राम राम मालकिन
2: राम राम
0: राम राम जी अपना नाम तो बताइए मालकिन
2: सुरभि तो अभी आपने वो चींटियों वाला पूछा ना देखो अगर वो औरत है तो बोलेगी कैसी लग रही हूँ या बोलेगी देख यार इधर सेल लगी हुई है और अगर आदमी है या मादा है वो बोलेगा यार लगी हुई है इन्फ्लेमेशन
0: मादा है और बोलेगा मादा बोलती है
2: अच्छा मादा
0: बोलती है नर बोलता है सूर्य सुरभि जी क्या कर रहे हैं यार आप एकदम से जेंडर आपने वो लिंग बदलो वाली क्लास नहीं पढ़ी ठीक से वो क्लास में कहते थे ना हिंदी क्लास में चलो लिंग बदलो जी कुड़ा कुड़ी मतलब कुड़ी मुंडा हम कुड़ी कुड़ा कहते चलो अच्छा मुंडा होगा तो ये बोलेगा क्या बोलेगा कि आज बियर पीने जाना है कि नहीं ऐसे
2: नहीं बोलेगा बहुत ज्यादा है इन्फ्लेशन चल रही है लगी हुई है
0: नहीं नहीं लड़का होगा तो वो बोलेगा एक तो तेरी भाभी भी यार सुबह सुबह मूड ही खराब कर देती है
2: हाँ
0: ऑलराइट ये कहती है जी सुरभि जी के मूड खराब कर देती है जी कोई बात नहीं हम आगे चलते हैं हमारे पास और कौन है हम इनसे बात करते हैं गुड इवनिंग Fun Asia रेडियो हु इज दिस
3: हेलो
0: हाँ जी सर जी गुड इवनिंग आप बताएं अकॉर्डिंग टू यू सर ये जो चींटियां आपस में रुकती हैं तो ये चींटा रुकता है कि चींटी रुकती है कि चींटा चींटी से मिलने के लिए रुक जाता है और जब भी ये रुकते हैं तो क्या बातें करते होंगे
3: भाई जी जो हाल चल रहा है ना वो तो यही कहते होंगे भाई ये देख ला जरा वीजा वूजा चेक करके लेके जाई पासपोर्ट लेके जाई अगे बैठे आईस वाले चेक कर रहे
0: अगे अगे आईस वाले बैठे चेक कर रहे
3: आईस वाले बैठे जरा ध्यान नाल जाई भाई
0: या ता इत्थों ही मुड़ जा या फिर मेनू ना कहीं के दस्या नहीं है जी That is wonderful. That is wonderful, Paji. I am gonna put you on hold, and I am gonna give you that D-Vibe giveaway. मेरा सवाल आपसे है. You can go to Aubrey. I hope that you can go to Aubrey and enjoy this.
3: Thank you.
0: All right, hold the line, man. Congratulations, Inanuji Jaspal ji, on winning that any item, one item from the menu of D-Vibe.
4: जरा मुख

और जहां जहां जा रहे हो वहां वहां को होलो इन द मीन टाइम बिंदास बोलो बिकॉज दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो जिसका नाम है जी द बिंदास शो इट्स 6:06 इन द स्टूडियो क्लॉक 6:06 आज फ्राइडे को मैं यहां पे इसलिए हूं क्योंकि नवनीता जी नहीं है she had to be somewhere and I am covering in for her trying to entertain you all the way till 7 o'clock in my show of course this part of the show is brought to you by Tanishq Jewelers dev chuki leke aaye hain ji aapke liye festival of diamonds and I think ek gana aaya tha diamonds are a girl's best friend and I think it was in the movie Moulin Rouge when I first heard that song aur tab se mere ko to pata lag gaya ki bhai ladies ko diamond bahut pasand hai ab aapko agar aapki lady pasand hai to usko diamond dilwana aapki pasand hona chahiye and bahut achhi deal chal rahi hai bhai first of all 25% off on diamond value 25% off on jewelry making charges and agar aap apna purana gold leke jate hain which is over 18 carat you get no deductions on the gold value matlab agar wo 1 kilo ka aapke paas kada pada hai jaise mere paas kahi pade honge 10 kilo ka bhi hai 5 kilo ka bhi hai मैं डंबल की बात कर रहा हूँ आपके पास अगर ज्वेलरी पड़ी है जो कि डायमंड की है आप उसको एक्सचेंज डायमंड की नहीं है गोल्ड की है गोल्ड की ज्वेलरी को जाके एक्सचेंज कीजिए उसी पैसे से डायमंड खरीदिए जो कि 25% डिस्काउंट पे है या फिर डायमंड का सेट बनवा लीजिए जिस पे मेकिंग चार्जेस पे भी 25% आपको डिस्काउंट मिल रहा है आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट इस वीकेंड पे IANT का इवेंट खत्म होने दो उसके बाद संडे को आपने आराम से दोपहर को जाना है ज्वेलरी स्टोर भाभी आप जाएंगे ज्वेलरी स्टोर इनको छोड़ देंगे ये बड़े दिनों से कह रहे हैं ना अपने दोस्त से मिलना है मिल नहीं पाता आप इनको अपने दोस्त के घर छोड़ देंगी क्रेडिट कार्ड आप इससे ले लेंगी क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगी ये तो ग्रोइंग एसेट है ये गाड़ियाँ लेते रहते हैं आईफोन 16 लेना है फलाना लेना है कोई वैल्यू नहीं है भाभी उसकी आपकी ज्वेलरी की वैल्यू है बढ़ती जाएगी समझाओ इस आदमी को

0: All right, let's slow things down a bit and take you to this gentleman who is, main kya bolu inke bare mein, itna entertain kiya is insaan ne hamein. And I will play a clip from one of his movies and you have to, kya guess karne wali kya baat hai, aap phata phati jaan jayenge ki main kiski baat kar raha hoon. Today happens to be his birthday as well, somebody who's given us countless comedy, countless moments of laughter and joy, and that is this gentleman right here.
1: देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम एक कंप्लेंट लिखवाने आए हैं।
2: अच्छा,
1: कल रात जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे तभी एक
2: एयरपोर्ट और ये पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट पे कितनी फैसिलिटीज होती है ना लोगों के लिए, जो खड़ा होना चाहे वो खड़ा हो गया, बैठ गया, एंजॉयमेंट होती है। और यहाँ
3: देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम एक प्रॉब्लम में

0: And let's see, who do we have here? वैसे तो आप सबको पता है इनका नाम, but good evening to you, Faneja, who's this? Hello. क्या बात है, कठोर दुनिया मुझसे बात नहीं करना चाहती है आज. रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए, अपना बढ़ा लीजिए. कौन बोल रहा है?
1: My name is Archana.
0: Hi Archana, you're so formal, I like it. अच्छे discipline.
1: Oh, thank you.
0: My name is Marvin. This is Faneja Radio. How can I help you?
1: Yeah, you just asking some questions.
0: I keep asking a lot of questions because life keeps asking me a new question every day. And then wife also asks me questions. So I think this world is all about question.
1: Yes, question. Yeah, I know. Morning to evening question.
0: Morning to evening. Your daughter asking you, Mama, what is this? Your son asking, where is my bottle? Husband asking, where is my chashma? All of that. Question bari life. But do you know the name of this gentleman I just played the clip of?
1: Johnny Lever,
0: absolutely right hai ma'am. Isme inaam to koi nahi tha, but at least meri aur aapki baat ho gayi. Ye shaam badhiya ho gayi, nahi?
1: Yeah, badhiya ho gayi. Yeah, I'm always listening to you.
0: Thank you. What's your name, you said?
1: Archana Saxena.
0: Archana ji, bahut bahut shukriya aapke call ka. Ek Archana wo hai. Ha ha ha. Wo wali Archana bhi hai. पर चलो मैं खुश हूँ कि ये वाली अर्चना वो वाली अर्चना नहीं है. आज वी आर टॉकिंग अबाउट जॉनी लीवर एंड व्हाट अ वंडरफुल कॉमेडियन एक्टर ही इज. 14th ऑफ अगस्त इज हिज बर्थडे. 1957 वाज द ईयर एंड टुडे मार्क्स हिज 69th बर्थडे. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू जॉनी बाबा फ्रॉम द टीम हियर एट Faneja एंड फ्रॉम बंदा बिंदास. और अगर इनकी फिल्मों की बात की जाए तो बहुत सारी फिल्में हैं मैन, जैसे कि दीवाना मस्ताना 1997, दूल्हे राजा 1998, एंड देन मैनी मैनी मैनी अदर मूवीज दैट ही इज बीन अ पार्ट ऑफ. एंड एवरी टाइम ही कम्स टू द स्क्रीन ही गिव्स अस अ लॉट ऑफ जॉय. विशिंग दिस जॉय फैक्ट्री अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ Faneja.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Hey, तुमने कभी insurance लिया?
4: लिया।
3: कभी policy समझ भी आया?
4: नहीं आया।
3: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
6: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
7: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
6: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
2: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath, world famous astrologer. Ab Dallas mein.
2: That magic

0: Removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
1: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
0: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: Ek aur laddu le lo.
5: Thodi aur biryani.
4: Arre America jaake thodi milega.
6: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
7: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स। वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन प्राइमरी केयर।
8: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
9: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
10: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
11: जिंदगी एक रंगमंच है
12: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल। हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
0: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
13: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
0: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

0: जिंदगी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद तो कुछ करना नहीं, बस लोगों को सलाह देने की बड़ी आदत होती है। मैं बताता हूँ तुझे क्या करना चाहिए। तुझे पता है तुझे ना ऐसे करना चाहिए। ऐसी मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, उनमें से एक है लेडी, वो कहती है मुझे बुरा ना मनाओ तो एक बात बताऊँ। मैंने कहा नहीं, मैं बुरा मान जाता हूँ दीदी, रहने दो, बहुत धन्यवाद। मगर बुरा ना बनाओ तो एक बात बताऊं। क्यों तुम पूछ ही ऐसे रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि बंदा बुरा बनाएगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ ना बताओ, चलो आगे।
1: प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है।
0: दरअसल पता है क्या है बड़े भैया, मैंने ना सबको अपना कर देखा, मैंने सबको अपना कर देखा और सबने सिर्फ अपना देखा।
1: ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है।
0: 6:26 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, 25 निकल गया था यार, तो मैंने कहा चलो 26 के साथ ही खेल लें। जिंदगी में सिर्फ वो यही थोड़ी है कि वो हमारे दिल से खेले, हम भी तो अल्फाजों से खेल सकते हैं मेरे दोस्त। दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो जिसका नाम है द बिंदास शो ऑन 104.9 FM फन इज योर रेडियो ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। टुडे इज द 14th of August एंड इन द ईयर 1959 मिस्टर मैजिक जॉनसन, यू हैव ऑल हर्ड दैट नेम, बट मैजिक जॉनसन द बास्केटबॉल प्लेयर वॉज बॉर्न ऑन टुडेज डेट 14th of August इन द ईयर 1959। 5-time NBA चैंपियन, 3-time फाइनल MVP एंड 3-time NBA MVP हु स्पेंट हिज इंटायर 13-year करियर विद द लॉस एंजलिस लेकर्स। ही वॉज नेम्ड टू 12 NBA ऑल स्टार गेम्स एंड लेड द लीग इन असिस्ट 4 times। ही हैज परफॉर्मेंसेज इन द 1992 ऑल स्टार गेम फॉलोइंग हिज HIV डायग्नोसिस अर्न हिम द गेम्स MVP अवार्ड। And today, we're celebrating this champion of basketball, Mr. Magic Johnson, born on today's date. Let's take you to the next track here and get the music going. And with this song, I'm going to ask you a question about your childhood. If you have with your sister and brother some fun memories, then you have had a lovely childhood. I have a lot of memories, but the opportunity is not mine, the opportunity is yours. I'm asking you a question that you have... अगर कुछ ऐसी यादें हैं जो फनी हैं, जो मिस्ट्री से भरी हैं या जॉय से भरी हैं, यू कैन गिव मी अ कॉल एट द स्टूडियो लाइन एंड शेयर योर स्टोरीज ऑफ योर सिबलिंग्स, बी दैट विद योर सिस्टर और योर ब्रदर। आई वांट टू हियर योर स्टोरी एंड सो डज चॉकटाउ कैसीनो। नाउ चॉकटाउ कैसीनो इज अ कैसीनो इन डुरांट राइट हियर इन ओक्लाहोमा, टेक्सास ओक्लाहोमा के बॉर्डर पे है एंड दे आर गिविंग यू एन ऑफर फॉर रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के लिए फन इज योर रेडियो एंड चॉकटाउ कैसीनो एंड रिजॉर्ट डुरांट वांट टू हियर योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और सिस्टर। आपको सिर्फ मेरे रेडियो के स्टूडियो पे कॉल करना है 972-235-5555। टेल अस योर स्टोरी एंड वन ऑफ वन और टू ऑफ दोज स्टोरीज will be selected today and sent to Choctaw Casino. Jeet sakte hain aap daily prizes including dining experiences, entertainment, resort stays and if you are lucky enough the grand prize which is an unforgettable siblings reunion weekend at Choctaw Casino and Resort in Durant. Complete contest details are available on the website which is funasia.net or on Fun Asia's social media pages. Choctaw Casino and Resort in Durant, where unforgettable memories are made together. So I'm going to ask you, tell me your memory of your brother or sister from childhood and win exciting prizes every day with a chance to get into the grand prize for a siblings weekend. Studio line is now open. 972-235-5555.

0: Jawani Janeman was the movie jisme aaya tha ji, the remake of the older track by none other than the Punjabi Kaliyan da Badshah. His name is Jazzy B, and we are also celebrating Monish Behl's birthday today. If you don't know, Monish Behl saab ka debut hua tha with the film Bekarar in a supporting role jo ki Padmini Kolhapuri and Sanjay Dutt ke saath thi. That was I think a long time ago, saal mujhe yaad nahi hai, but on the 14th of August aaj hi ke din in the year 1961 he was born. He's 65 years of age, and inke uske baad jo release आई थी उसमें तेरी बाहों में एक फिल्म आई थी, दैट वाज इन 1984. देन केम द ब्लू लगून व्हिच वाज विद आयशा दत्त एंड जैकी श्रॉफ, वाइफ ऑफ जैकी श्रॉफ रादर. एंड देन द फिल्म्स लाइक हम आपके हैं कौन, बहुत हिट एपिक फिल्म है जो आप सब ने देखी है, एंड ही हैड अ गुड लीड रोल इन दैट वन. हम साथ साथ हैं हमें फिर से नजर आए, एंड ऑल्सो स्टार इन ओवर 100 फिल्म्स, नॉमिनेटेड फॉर 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स. बॉर्न इन मुंबई महाराष्ट्र टू द नोटेबल एक्टर नूतन. जी हाँ, नूतन वॉज हिज मदर. And his father was Rajneesh Bahal, and that's where the name Bahal comes from. But we're wishing this gentleman as well a very happy birthday. Now, maine aapse pucha tha, any of your stories about your childhood with your sister or your brother, कोई भी कहानी आपकी बचपन की आपको याद हो, रक्षाबंधन आ रहा है जी. एंड इस रक्षाबंधन के बंधन को पूरा करने के लिए चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन डोरांट इज गिविंग यू ग्रेट एक्साइटिंग प्राइजेस. आप वहां के डिनर्स जीत सकते हैं, दैट मींस व्हेन यू गो देयर यू कैन गेट कूपन्स फॉर रेस्टोरेंट्स व्हिच आर देयर एंड यू कैन डाइन इन देम एब्सोल्युटली फ्री. यू कैन गेट एंटरटेनमेंट वाउचर्स, यू कैन गेट गेम वाउचर्स, मेनी मेनी अदर प्राइजेस. एंड इफ यू आर लकी इनफ, यू एंड योर सिबलिंग कैन गेट अ वीकेंड गेटअवे एट चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट. That is in Durant for you. तो अगर आपने जीतने हैं जी ये इनाम, all you have to do is share your story with me. Studio का नंबर आपके लिए खुला है, 972-235-5555 is the number to the studio. And I am going to be waiting for your calls as I take you to the next track. And this is also a birthday. And this voice, as it came, it just shook the industry. मतलब एकदम से एक ताजी वेव आई थी when we heard this sound. But before that, let me get to the calls here. Good evening, Fanesia. Who's this?
1: Hi, this is Amit.
0: Hi, Amit. How are you, brother?
1: I'm good. How are you?
0: God is good. Life is beautiful. Just some, falls in the childhood hit the head sometimes, and those come back out and start hurting, and I say anything and everything outside of the box.
1: That's it.
0: बाकी सब ठीक है. अच्छा सर, आपको कोई याद आपकी हो जो आपके ब्रदर या सिस्टर के साथ आपको याद हो, दैट यू वांट टू शेयर विद अस?
1: Definitely, lots of them. But आपने जब रक्षाबंधन कहा तो मुझे एक related story याद आ गई. It's related to कंजके, कन्या पूजन होती है जो. Always feel like, why my sister is the only one who's getting all the money and gifts at that time. और उसकी पूजा होती है और ये सब होता है, तो शाम को वो अपने सारे पैसे इकट्ठे करके मुझे दिखाती थी कि उसको आज कितने पैसे मिले हैं. एंड देन शी वाज सो स्वीट, शी यूज्ड टू टेक मी आउट विद हरसेल्फ एंड से कि तुझे भी जो खरीदना है खरीद ले, आज मेरे पास बहुत पैसे हैं. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू कंजके इवन दो आई वाज नॉट अ कंजके.
0: व्हाट इज योर नेम एंड हर नेम?
1: माय नेम इज अमित एंड माय सिस्टर्स नेम इज पूजा.
0: अमित एंड पूजा, यार आप लोगों ने तो कंजके कह के ना मुझे वो पूरी और काले चने याद करा दिए यार, क्यों ऐसा करते
1: हैं?
0: ना उसका exactly. उसका स्वाद कुछ और ही होता है. एंड यू नो, बहन के हाथ से, वाज शी यंगर टू यू योर सिस्टर और शी एल्डर टू?
1: नो, एल्डर टू मी. एल्डर,
0: अच्छा, एल्डर सिस्टर. तो वैसे ना सिस्टर के हाथ, मतलब सिस्टर के पैसों से खाना खाना, सिस्टर की पॉकेट मनी से, सिस्टर जब कमाने लगे उससे, उसका मजा कुछ और ही होता है. आजकल ना एक रील बड़ी पॉपुलर हो रही है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, उसमें ना एक बच्चे की आवाज है, याल याल बहन कुछ खिला ही दे याल, दोल दप्पे, पानी पुली, पिज्जा, बलगल खवा लेते दीदी प्लीज यार, बहुत टाइम हो गया. So I loved this story, brother. I'm going to keep you on hold, take your information, get it to Choctaw. In the meantime, let's listen to the birthday girl. रुक जाओ यार, ये कहानी चलने से पहले एक और कॉलर ले ही लेते हैं, कर लेते हैं.
1: रेडियो
0: खामोश, रेडियो का वॉल्यूम बंद क्यों नहीं करते हो तुम? कौन बोल रहा है?
1: रुक जाओ यार, ये कहानी चलने से पहले.
0: रेडियो रेडियो हेलो, खामोश हो जाओ यार, रेडियो का वॉल्यूम बंद कर लो यार, क्या हो गया यार, ऐसे मत करो यार. कौन बोल रहा है? हेलो दीदी, दादा, अंकल, चाचू, कौन है? गुड इवनिंग. नहीं भैया, इनको सिर्फ मेरी आवाज़ सुननी है. चलो आप मेरी आवाज़ सुनो और हम सब मिलके सुनिधि जी की आवाज़ सुनते हैं. हैप्पी बर्थडे टू हर.

0: Let's take a short commercial break and come back with the last segment of this evening Drive Time Show in just a bit.
1: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
2: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
3: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट अटर्नी उमर डॉट कॉम।

0: बीवी घर का चिराग होती है जनाब, बीवी इज लाइक द चिराग ऑफ द हाउस। सोचो कि अगर दो चिराग हो जाए तो कितनी रोशनी हो जाएगी ना, पर दूसरी बात तरफ ये भी सोचो कि बड़ा इतना सेक लगेगा ना, तेरे चिराग शिराग के सारे सपने खत्म हो जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो व्हिच इज द वन एंड ओनली बिंदास शो ऑन फन एशिया। एंड दोबारा से याद करा रहा हूँ आपको कि कल आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, यू हैव टू बी एट द IANT आनंद बाजार व्हिच इज द 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। And this is the 49th from the team of IANT. And I give kudos to them, man. They've been doing this for 49 years, trying to build our community here, trying to give the community something to look after year after year after year. So give big kudos, big congratulations. I was at the venue today getting some briefing done. So I'll be emceeing the event for you tomorrow along with some other MCs as well. So make sure that you come there 2 o'clock onwards. This is totally indoors and you don't have to worry about paying a ticket to get in because it's absolutely free. Sunidhi Chauhan ke gaane aapne sune ji, ek before we went to the break and the next one right, this one which was Esha Jadu Dalare. She is born on today's date. It's her happy birthday and her birth name is actually Sunidhi Dushyant Chauhan. Birth name was actually Nidhi Chauhan. But kyunke jab inka music talent hua, तो इनको जब डिस्कवर किया गया तो आई थिंक देयर वाज वन म्यूजिक डायरेक्टर हु एक्चुअली टोल्ड हर कि नहीं, आपका निधि नहीं, बिकॉज आपने सुर है तो आपको सुनिधि नाम दिया जाएगा। सुनिधि दुष्यंत चौहान, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, 42 इयर्स ऑफ एज, बोर्न ऑन टुडेज डेट 14th of August इन 1983। टेकिंग यू टू वन मोर ट्रैक एंड दिस वन इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम, मैं उनको कहता हूँ जी 25 वाली लड़की, दिल्ली दी कुड़ी, सेंडिंग दिस ट्रैक टू चंडीगढ़ का छोकरा।
1: चंडीगढ़ में घूम रहा हूँ, कत जान लाग रही है आज जाना।

Life is full of joys, man. The sadness that comes, usko karo minus and just add and multiply the joys in life. Doston se milna acha lagta hai, milo yaar. Friends se baatein karna acha lagta hai, karo yaar. Haan, uska discipline hona chahiye. Jaise jab main young tha, to almost agar 12 ghante ka din, 14 ghante, matlab 24 ghante ka din tha, to usme se 14 ghante main sota tha, 2 ghante main padhai karta tha aur 8 ghante main bahar hota tha. Phir maa galiyan nikalti thi, phir meri shaadi ho gayi. अब आपको पता है सिनेरियो, आपके जैसा ही हाल है मेरा भी. बट जब भी मौका मिले यार, दोस्तों से मिल लिया करो, कोई ना कोई वीकेंड पे बात कर लिया करो, कहीं मिलके कुछ उधम मचा लिया करो. और अगर इतनी ही टेंशन है भाभी आपको कि ये कहाँ उधम मचाने जा रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने कहना जा तू उधम मचा, मुझे दे दे क्रेडिट कार्ड, मैं चली हूँ तनिष्क ज्वेलरी पे, क्योंकि वहाँ पे लगी हुई है द फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स. डायमंड्स का त्यौहार चल रहा है जी. 25% ऑफ डायमंड वैल्यू, 25% आपको डायमंड बनाने की ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस पर डिस्काउंट मिलेगा. और अगर इनकी मम्मा का कोई पुराना सोना पड़ा ना, वो ले जाना. अगर 18 कैरेट से ऊपर होगा तो गोल्ड की पूरी वैल्यू मिलेगी. समझ गई ना भाभी, आपको ये करना. और इनको जाने दो, मरने दो अपने दोस्तों के साथ. आप सिर्फ अपनी फोकस करो जॉय पे, बिकॉज दैट्स ऑल दैट मैटर्स. एक प्यारी सी लड़की आयशा अलीना, आई थिंक हर नेम, वेरी यंग गर्ल, शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कैन आई लिसन टू हम प्यार करने वाले फ्रॉम द मूवी धुरंधर. एब्सोल्युटली स्वीट हार्ट, यू कैन लिसन टू दैट ट्रैक. एंड विद दैट ट्रैक आई एम गोना बी साइनिंग ऑफ, बिकॉज मेरा टाइम हो रहा है जी खत्म. जो आता है उसको जाना है, जो शुरू हुआ है उसको खत्म होना है. तो मैं चलता हूँ. पर आपको एक बात बता दूं, जिंदगी में भले ही जितनी भी तकलीफें, दुख, बैंड बजी हो, यू नो, वाट लगी पड़ी हो, आपकी भी हमारी भी, कोई ना कोई ऐसा आता है जो बोलता है मजे तो तुम्हारे हैं, हाँ तो कर ले तू भी. विद दैट इट इज गुड नाइट, आदियोस, विल सी यू मंडे.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
5: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में? सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: Call Hari Basera on 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: ये तारा वो तारा हर तारा।
8: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक